0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास चांदनी रातें।
0: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: दुनिया के लिए लिखते, न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, तेरे लिए लिखते।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: cool song.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

एंटरटेनमेंट की यहाँ कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में बेहद खूबसूरत गाना काफिराना फ्रॉम द मूवी केदारनाथ ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान। सितंबर 1 ट्यूसडे का दिन, हफ्ते का तो तीसरा दिन है हमारा, लेकिन महीने का पहला दिन। आई होप कि हम सबका अगस्त, मतलब मेरा तो मुझे पता है, एंड आई एम होपिंग कि आपका भी अगस्त बहुत अमेजिंग गया, सब बढ़िया रहा, और अगर कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे हो गया तो इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। एंड सितंबर फुल पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हैं हम, यही उम्मीद करती हूँ मैं।
1: होने दो बत्तियाँ, होने दो बत्तियाँ,
0: होती ही रहेंगी, इसे तो कौन रोक सकता है। आपसे बात किए बिना मेरा दिन का

इनएविटेबल क्वेश्चन है ये, क्यों करते हैं, क्यों मरते हैं, वी डोंट नो बट वी ऑल डू बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग टू एक्सपीरियंस लव इन योर लाइफ, दैट इज द मोस्ट सरियल एंड ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस.

0: वेल दिल का तो यही है यार।
1: जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: This beautiful track is also on the way. ये सारे कमाल के गाने इस घंटे में आप सुनने वाले हैं और भी बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे बीच में और ढेर सारी बातें करनी है मुझे आपसे, लेकिन सबसे पहले आपके हालचाल जानने हैं। कल का दिन कैसा गया और अभी क्या कर रहे हैं बच्चे? अगर ऑलरेडी स्कूल के लिए निकल गए तो गुड मॉर्निंग क्यूटीज, आई होप यू गाइज हैव एन अमेजिंग डे। और अगर वक्त हो तो ज़रा एक गुड मॉर्निंग मैसेज कर दो यार मुझे, मेरा भी दिन बना दो 3311 1063 पर। और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक।
4: अरमान मलिक
5: नंबर
3: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तनिषा
1: नंदिनी सरकार और जेब बेंगश की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना है। एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक। फितूर मूवी से सुना आपने ऑन रेडियो 11.3 FM। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। और

0: रही थी, मैं सोच रही थी यार मैंने कितनी एनर्जी लगा दी है पिछले 3-4 दिनों में जस्ट टू यू नो ट्राई नॉट टू गेट अनॉयड, बट स्टिल आई एम गेटिंग वेरी अनॉयड एंड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड इट इज सर्विंग मी नो गुड. वाई कांट आई जस्ट यू नो कॉर्डियली को एग्जिस्ट इन द सेम एनवायरमेंट. सो आज से मैं वो कोशिश करने वाली हूँ. अगर यू नो आप भी ऐसी सिचुएशन, हाँ वी ऑल गो थ्रू दिस राइट, कुछ लोगों के जस्ट होने से ही हमें परेशानी हो जाने लगती है, पता नहीं क्यों. देर इज़ नो रीज़न बिहाइंड इट, इट्स नॉट लाइक दे आर अ बैड पर्सन, इट्स नॉट लाइक यू आर अ बैड पर्सन, बट इट जस्ट हैपन्स. सो या आई एम गोना ट्राई टू वर्क ऑन दैट फ्रॉम टुडे. और शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है, कहते हैं लाइफ्स अ गिफ्ट, birth is parents gift, education is teacher's gift, job is company's gift, wife is life's gift, but friends are God's gift, cherish them, they are rare. Beautiful, sahi baat hai. दोस्तों के होने से जिंदगी थोड़ी और कूल बन जाती है हमारी, है ना. मतलब हम किसी भी मिजरेबल सिचुएशन में क्यों ना हो, वी गेट दी एबिलिटी बाई बींग विद आर फ्रेंड्स कि हम उस सिचुएशन का भी मजाक उड़ा लेते हैं, उसमें भी हंस लेते हैं. अबरार जी का भी गुड मॉर्निंग आया है हमें, और जुल्फी जी का भी गुड मॉर्निंग आया है प्यारा सा. कहते हैं स्टेप इन टू टूडे विद अ लाइटर हार्ट, अ क्लियर माइंड एंड द क्वाइट कॉन्फिडेंस दैट बेटर डेज आर स्टिल अहेड, एंड आई एक्चुअली नीडेड दिस वन. सो थैंक यू सो मच जुल्फी जी. और मुझे यहाँ पे पलाश कुमार का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग पलाश जी. सोना शंकर जी, आफ्टर सो लॉन्ग, गुड मॉर्निंग सोना जी, हाउ आर यू. एंड टू एवरीबॉडी एल्स आउट देयर जो ऑलरेडी काम पे निकल चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं जाने की, या फिर अभी ही उठे हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान. आई होप यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे.
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
0: ओए होए,
1: लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस.
0: Rise and shine, sunshine, sending cool song of the hour for you. Sunte rahiye Radio Olive to you, Bindas.
2: Awesome.
3: Radio Olive par aane wala gana, cool song of the hour.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसेराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसेराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

0: ब्यूटीफुल ट्रैगल ऑन रेडियो 106.3 FM दनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज
0: सो आज का जो सवाल है फॉर ऑल द क्यूटीज हू आर गोइंग टू स्कूल राइट नाउ अगर वक्त है तो यू नो या आइदर टेल योर पेरेंट्स की जवाब दे दो तनिशा दीदी को और या फिर आप खुद भी वॉइस नोट भेज सकते हो ठीक है द क्वेश्चन इज इट इज अ रिडल व्हाट हैज टू विंग्स एंड कैन फ्लाई बट इज नॉट अ बर्ड व्हाट इज इट इट हैज टू विंग्स And it can fly, but it is not a bird. Tell me what is the correct answer. 3311-1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444-1063 पर. वॉइस नोट भेजेंगे तो बेहतर होगा वैसे. एक बार फिर से सवाल बताती हूँ. What has two wings? It can fly, but it is not a bird. बताइए जल्दी से इंतजार कर रही हूँ आपके जवाब का भेज रही हूँ अरिजीत सिंह की आवाज में यार राजकुमार से धोखाधड़ी स्टे ट्यून्ड रेडियो बिंदास

0: Tanisha. परेश पाजा के आवाज में दूर दूर ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन रेडियो 106.3 FM. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज. तो आज का मेरा सवाल ब्लैकबोर्ड स्टोरीज का है, व्हाट हैज टू विंग्स एंड कैन फ्लाई बट इज नॉट अ बर्ड. एंड आई हैव गॉट आंसर्स ओवर हियर. एक तो मुझे करेक्ट आंसर आ गया, बाकी के थोड़े ठीक नहीं है. चिकन इज ऑल्सो अ बर्ड बाय द वे, सो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. एक और मौका देती हूँ. व्हाट इज दैट थिंग विच हैज टू विंग्स एंड कैन फ्लाई बट इज नॉट अ बर्ड. 3311063 पर बताएं और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव ट्रियो बिंदास.
1: Radio Olive Bar.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh air. Yeah, Ghana, fresh air.
1: Fresh song of the hour.
2: Yeah, Ghana.

0: वो पाट दे तूड़ा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

जुबीन नौटियाल की आवाज में बड़ा खूबसूरत गाना जादुई फ्रॉम द मूवी टू झूठी मैं मक्कार ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, एंड मैंने सवाल पूछा था व्हाट हैज टू विंग्स एंड कैन फ्लाई बट इज नॉट अ बर्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज एरोप्लेन। यस, सबसे पहले सही जवाब मुझे सरमत जी ने दिया, एंड देन धीरे धीरे जब मैंने दोबारा से पूछा और बताया कि चिकन इज नॉट द बर्ड, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, आई मीन चिकन इज द बर्ड एंड दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, एक्साइटमेंट में उल्टा बोल गई। सो उसके बाद मुझे और भी सही जवाब आए हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आप मुझे बोलेंगे शुक्रिया बिकॉज लुक एट द सॉन्ग, आई मीन लिसन टू द सॉन्ग व्हिच आई एम गोना प्ले इन दिस आवर।

ब्यूटीफुल ट्रैक है। अच्छे जी absolutely love that track. उसको तो मैं इतना ज़्यादा enjoy करती हूँ, drug से लाज. Initially when this song came, I was like, what nonsense is this? Then it usually like कुछ और गानों के साथ भी recently यही हुआ है, you know, it grows on you. So drug से लाज is one of them. Well, कुछ ही देर में लौट कर आती हूँ, मौसम की बात करेंगे और एक बहुत सुंदर सी चीज़ मैं लेकर आई हूँ आपको सुनाने के लिए. सुनाऊंगी कुछ ही देर में, अभी आप गाने enjoy कीजिए, ठीक है? सदरे रेडियो ऑल ऑफ जी बिंदास.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनिषा को बिंदास मॉर्निंग में। मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha. Kapoor and Sansi, Khargi Jewel on Yon Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke sad bindas morning chal rahe hain par. It's quite windy, but it's hot. 36 degrees temperature है इस वक्त और 42 fields है और हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ है 22 किलोमीटर पर आवर सो ज़रा यू नो संभल के जाइएगा और अगर क्योंकि हवा है तो डस्ट भी होगी और अगर आपको कोई एलर्जीज़ है तो प्लीज़ मास्क वगैरह पहनिए और ख्याल रखें क्योंकि एलर्जीज़ ट्रिगर हो सकती हैं. अलॉन्ग विद दैट मेड डिपार्टमेंट ने कहा है अब सेप्टेम्बर आ ही गया है तो धीरे धीरे आप ऐसे वेदर में थोड़ी नरमी देखेंगे थोड़ा ठंडी तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा बहुत स्लोली एंड स्टेडीली बट होगा. ओके 20th तक तो हमको एकदम विजिबल और विजिबल नहीं फील होने वाला डिफरेंस पता चल जाएगा. सो या आई एम वेटिंग फॉर दैट. बाकी जो मैंने कहा था ना एक बहुत सुंदर चीज़ मैंने सुनी है वो आपको सुनाना चाहती हूँ. ये देखिए जय शेट्टी साहब कुछ बहुत कमाल बोल रहे हैं.
1: One of my favorite quotes is, confidence doesn't mean everyone will like me. It means I'll be okay even if they don't.
0: Exactly. जरूरी नहीं है ना कि आप हर किसी को पसंद आ जाएं. हाँ कभी कभी ऐसे होता है कि you have not done anything. Like the example I gave in the morning, कि there is this person जिसने कुछ नहीं किया है to like you know hurt me, harm me, offend me, nothing at all. It's just I don't like it. I don't like the vibe. Same way मेरे साथ भी हो सकता है. हो सकता है कि कोई मुझे for no reason at all because हमारी vibe match नहीं कर रही है तो पसंद ना करे and that is absolutely fine. वो bother नहीं करना चाहिए क्योंकि you are not out here to impress anyone or everyone. Anyone नहीं बोल सकते everyone. और you know जिन्हें जो बॉदर हो रहे हैं ना आपकी प्रेजेंस से उसे वहीं छोड़ देना चाहिए इंस्टेड ऑफ उसी के ऊपर सोचते रहना यू नो ये प्रेशर डालना कि भाई आई हैव टू डू समथिंग सो दैट दिस पर्सन लाइक्स मी. नो आप कुछ भी कर लो नहीं होने वाला है वो. सो जस्ट लेट इट बी. यू नो व्हाट यू आर. यू जस्ट डू राइट बाय योर सेल्फ एंड दैट मैटर्स द मोस्ट.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: Ready? To learn.
1: Yes.
0: To play.
1: Absolutely.
0: To grow.
1: With Maserati.
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: Tanisha.
1: Nikhil D'Souza ki awaaz mein Mere Bina from the movie crew calling on radio all at 106.3 FM Tanisha aapke saath bindas morning chal raha hai yahan par aur Qatar Energy ne fuel prices jo hai wo announce kar diye hain aur koi change nahi hai jo August mein the same hi hain abhi bhi so premium gasoline was 2 rial it's same super gasoline was 2.10 same hai abhi bhi diesel was 2.05 abhi bhi same hai there is no you know price drop or price increase so vidhaiyan usme along with that I wanted to remind you ki back to school season aa chuka hai you know like schools have already started kids have started going it's been either 2 or 3 days for kids lekin abhi fun jo hai वो ख़त्म नहीं हुआ है मेरी जान जी हाँ क्योंकि रियादा मेडिकल सेंटर और ऑल ऑफ सुनर रेडियो नेटवर्क आपके लिए बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब लेकर आए हैं जो कि होने वाला है इस फ्राइडे को 4th ऑफ सितंबर सुबह 9 से 11 बजे तक रियादा मेडिकल सेंटर में एंड इट विल बी फोकस्ड मोर ऑन हेल्थ एंड हाइजीन बच्चों को बहुत ही मज़ा आने वाला है बिकॉज बहुत फन एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं अराउंड दैट एंड इट विल बी एन एक्सपीरियंस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आई कैन इमेजिन द काइंड ऑफ फन किड्स विल बी हैविंग और साथ में हम भी ऑब्वियसली सो अगर रजिस्टर करना चाहते हैं अपने बच्चे को इस बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब के लिए तो फटाफट से मैसेज कर दीजिए OR स्पेस बच्चे का नाम एंड सेंड इट टू 3311-1063 OR स्पेस बच्चे का नाम एंड सेंड इट टू 3311-1063 हाँ जी और सुन रही है रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी

0: शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
0: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

You're listening to Radio 11.6.3 FM, Dinesh आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड कदम म्यूजियम ने अनाउंस कर दिया अपने सितंबर प्रोग्राम. सो बहुत सारी चीज़ें होने वाली, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, अडल्ट के लिए, सब के लिए कुछ ना कुछ है. यू नो देर विल बी आर्ट वर्कशॉप्स, देर विल बी टॉक्स एंड डिस्कशंस, स्टोरी टेलिंग सेशन, क्रिएटिव कोर्सेज भी हैं, फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं और म्यूजियम टूर और कल्चरल एक्सपीरियंसेस. ये जो भी इवेंट्स हैं दीज आर बी hosted across several Qatar museum venues, जो कि विजिटर्स को अपॉर्चुनिटी देगा टू एक्सप्लोर आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज. दैट्स द बेस्ट पार्ट, यू नो द वे Qatar टेक्स अलॉन्ग, यू नो वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, बट जो अपना हेरिटेज, अपना जो रूट्स है, अपने जो कल्चर है, उसको एकदम साथ में लेकर पैरेलली चल रहे हैं. दैट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग. सो सितंबर का जो प्रोग्राम है, इट इज़ डिजाइन टू एनकरेज क्रिएटिविटी, लर्निंग एंड कल्चरल एंगेजमेंट फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस. बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए कुछ ना कुछ है. एंड ऑल्सो Qatar म्यूजियम इज़ कंटिन्यूइंग इट्स मेजर ऑटम 2026 कल्चरल सीजन. सो बहुत सारे एग्जिबिशंस होने वाले हैं सितंबर और नवंबर के बीच में. सो गेट रेडी फॉर इट. और पूरा जो स्केड्यूल है, टाइमिंग, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, वो सब आप Qatar म्यूजियम के कैलेंडर पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और रजिस्टर कर लीजिए. और हैव एन अमेजिंग सितंबर मेरी जान, फुल ऑफ लर्निंग, पॉजिटिविटी, फन, ब्यूटिफुल मेमोरीज एंड एवरीथिंग गुड. स्टे ट्यून्ड एंड जी विंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: स्कूल खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
0: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: डॉक्टर ऑन एयर brought to you by Naseem Healthcare.
5: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
4: Dr. On Air, brought to you by Naseem Healthcare.

0: हरजीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदा।

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Badshah Arj bhi not tell you as my okay Janu say the Hamma song suna apne. And bhai Qatar Museums ke baare mein humne baat kar li. Qatar National Library ne bhi apne, you know, variety of programs or activities jo wo September mein karne wale hain wo announce kar diye hain. And it is focused on, you know, students and women and creativity. And it is absolutely amazing. So students ke liye bahut sari activities hain focused on learning, development and mentorship. Kyunki अभी यू नो सीजन स्टार्ट हुआ है स्कूल का सो इट इज़ रियली गुड. विमेन के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए हैं टू सपोर्ट लर्निंग एम्पावरमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट. वाओ क्रिएटिव्स जो है लाइक जो क्रिएटिव माइंडसेट वाले लोग हैं उनके लिए सेशंस हैं फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी क्रिएटिविटी एंड लिटरेचर. सो वट एवर यू नो एक्साइट्स यू गो फॉर दैट. एंड द लाइब्रेरी विल ऑल्सो ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंटरशिप नेटवर्किंग एंड नॉलेज शेयरिंग. जो सेप्टेम्बर का ये लाइनअप है इट कम्बाइंस ऑल यू नो एजुकेशन लिटरेचर टेक्नोलॉजी क्रिएटिव लर्निंग सब कुछ है वहाँ पर. एंड ये जो प्रोग्राम्स हैं दीज आर डिजाइन टू प्रोवाइड यूजफुल स्किल्स एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी में भी तो जाइए Q&L का स्केड्यूल जो है वो चेक कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए खुद को. एंड हैव फन लर्न न्यू थिंग्स मीट न्यू पीपल. एक इवेंटफुल सितंबर होगा. बाकी एक और लेडी है जिन्होंने लाइब्रेरी का इतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया उसके बारे में मैं बताऊंगी कुछ ही देर में. लौट कर आती हूँ. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर क्या बात ये बात है.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: स्कूल खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
0: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
1: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाओ इस लड़के को।
3: उफ, सुबह शाम बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन, बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
3: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
4: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
5: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

विशाल शेखर और सुनिधि चौहान की आवाज में कैश एक्सटेंडेड मिक्स कैश मूवी से इससे ज्यादा रिलेटेबल गाना कोई है नहीं, आई डोंट थिंक सो. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. एंड लोगों ने भाई गॉसिप को बिजनेस बना लिया है. कुछ टाइम पहले वी रेड अबाउट अ लेडी फ्रॉम इटली, यू नो शी वॉज रनिंग दिस गॉसिप ग्रुप और पीपल हैड टू पे हर और वो अपने एरिया की लोकेलिटी की गॉसिप बताती थी लोगों को. एंड उसने उस पैसों से दो घर खरीद लिए. नाउ यूके से खबर आ रही है, 89 ईयर ओल्ड वुमेन, शी हैज़ बीन बैंड फ्रॉम हर लाइब्रेरी जहाँ वो 60 ईयर्स से जाती थी. ठीक है, उनको बैन कर दिया गया है क्योंकि वो एक साइलेंट गॉसिप नेटवर्क चला रही थी पिछले एक साल से उस लाइब्रेरी में. सो बेसिकली वो बुक्स के अंदर चिट्स रखती थी और वो चार रनर्स उन्होंने रखे हुए थे, यू नो गॉसिप को इधर से उधर पास करने के लिए. और डिपेंड करता था, चिट्स के कलर्स थे. सो अगर रेड है तो बहुत अर्जेंट है, येलो है तो ठीक है थोड़ा डिले भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि गॉसिप को स्प्रेड करने की अर्जेंसी ये क्या है, ये क्यों है ये. सो एक साल से जो लाइब्रेरी थी, लाइक जो मैनेजमेंट थी लाइब्रेरी की, वो कोशिश कर रही थी पता करने की कि कौन है ये, कौन चला रहा है ये ग्रुप, ये नेटवर्क. और फाइनली उन्हें पता चल गया है. So yeah, she has been banned. I am flabbergasted. कैसे कर लेते हैं लोग? वो चन्न दी कुड़ी पतला दी पैर सर तेनू बिजली बिजली कैन जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं तारे भी डर के रे. मतलब कहीं से भी you know कैश वाली अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं. देखा देखा आपने मैंने क्या किया अभी. एकदम ब्रांड न्यू ट्रैक.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: रेडी
3: टू लर्न
2: टू प्ले टू ग्रो
4: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
5: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस्तन निशा को बिंदास मॉर्निंग में
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
7: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, Abke, Seth, Bindas, Mornings, Children. Wacky
1: Wisdom.
0: Wacky Wisdom में आज कुछ बहुत exciting बताने वाली हूँ मैं. So, Pandora's Box के बारे में हम सबको पता है, right? उसके पीछे एक बहुत interesting story है. So, it comes from Greek mythology, ठीक है? And there was a woman called Pandora. She was very curious by nature. ओके सो उन्हें ना एक गिफ्ट मिलता है फ्रॉम वन ऑफ द गॉड्स. इट्स अ स्टोरी, ठीक है? सो डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लिसन टू दिस. सो शी गेट्स अ बॉक्स एज अ गिफ्ट, बट शी इज़ वॉर्न्ड कि इसे मत खोलना कभी भी. पर क्योंकि वो क्यूरियस थी नेचर से, उन्होंने उस बॉक्स को खोल लिया. एंड जैसे ही उन्होंने उस बॉक्स को खोला, उसमें से यू नो जितनी भी इविल चीज़ें हैं ना, लाइक ग्रीफ, जेलिसी, ग्रीड, ऑल दीज इविल और बैड थिंग्स स्टार्टेड कमिंग आउट. और वो बहुत पैनिक कर गई जैसे ही उन्होंने ये सब देखा. उन्होंने फटाफट से बॉक्स को बंद कर दिया. पर इतनी देर में सारी जितनी भी इविल चीज़ें थी, बुरी चीज़ें थी, वो सब बाहर आ गई इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड, ठीक है? नाउ शी वॉज वेरी पैनिक. जब वो थोड़ा काम डाउन हुई तो उन्होंने फिर से उस बॉक्स को खोल कर देखा कि कुछ अभी भी बाकी था उसमें. एंड द लास्ट थिंग वॉज होप इन दैट, एंड दैट ऑल्सो केम आउट. सो जब भी कहते हैं ना कि कुछ भी हो लाइफ में, द लास्ट थिंग रिमेन्स विद अस इज होप. It comes from this. और जब हम Pandora's box की बात करते हैं, हमें लगता है कि all the good things come from Pandora's box. But no, there's only one good thing which comes out of it. That is hope. Rest are not so good things. So next time, whenever you know you talk about hope or you talk about Pandora's box, remember this story. Interesting, right? Stay tuned to Radio Olive. To you, Bindas. Radio.

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

नीति मोहन और शादा फरीद की आवाज में काले रहना ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर रेडियो 106.3 एफएम दनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं अबर टिकटॉक में दो बातें करनी है मैंने एक तो ना किसी ने एक ऐप बनाया है जो कि हमारे ईमेल्स को यू नो मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी ले आएगी सो बेसिकली AI का ही इस्तेमाल हुआ है ऑब्वियसली उसमें क्योंकि यू नो यू कैन जस्ट से व्हाट यू वांट टू ड्राफ्ट इन द मेल क्या लिखना चाहते हैं आप और उसको बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल तरीके से लिख देगा वो अंडरस्टैंड करके यू डोंट हैव टू लाइक गिव अ प्रॉम्प्ट लाइक दैट जैसे हमें अलग से चैट जीपीटी एंड ऑल पे देना पड़ता है यू जस्ट से कि तुम्हें क्या चाहिए वो उसको प्रोफेशनली तरीके से राइट अप करके मेल बना देंगे एंड आपका जो इनबॉक्स है उसको मैनेज करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा इसके थ्रू इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग ऐप इट इज़ कॉल्ड अवेक मेल सो अवेक आई थिंक इट्स द फ्रेंच वर्ड AVEC एंड मेल MAIL वी ऑल नो दैट या और वो जो आपका इनबॉक्स है उसको बहुत बढ़िया तरीके से प्रायोरिटाइज कर देगा आपको नोटिफिकेशन भेजेगा जब भी कोई यूज़फुल मेल आ रहा है और जो ये सब्सक्रिप्शन इन ऑन वाले आ रहे हैं उसको तो खुद ही हटा देगा वो तो ये तो बहुत ज़ोर से ज़रूरी है क्योंकि मेल हमारे मेल में ना इनबॉक्स में आधे से ज़्यादा तो वो सब्सक्रिप्शन वाले ही पड़े होते हैं एंड इट इज़ सो अनोइंग बट या इट विल हेल्प विद दैट अलॉन्ग विद दैट सैम ऑल्टमैन सर ने कहा है कि जल्दी जैसे हम वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का मीटर्ड बिल पे करते हैं ना हो सकता है कि AI के लिए भी करना पड़े जी हाँ

0: कहा था ना स्कैम है, मत इसकी आदत लगाओ। अब आदत लगा दी है, अब पैसे भरवाएंगे हमसे।
1: मैं तो लुटपुट गया, लुटपुट गया, मैं तो गया।
0: काफी रिलेटेबल हो गया ना सिचुएशन के साथ ही गाना। जी
2: होने हो जाएगा प्यार, चलिया होने होने हो जाएगा प्यार,
0: हो ही जाएगा जी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सुन रही है रेडियो 106.3 FM जी।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू, अगर अभी तक नहीं रजिस्टर किया है तो जल्दी से अपने बच्चे को रजिस्टर कर लो फॉर बैक टू स्कूल जूनियर के क्लब. यस, रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुन रेडियो नेटवर्क आपके लिए लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर के क्लब, जो कि होने वाला है दिस फ्राइडे 4th of September सुबह 9 से 11 बजे तक रियादा मेडिकल सेंटर में. और इट विल बी फोकस्ड ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, तो बच्चों को बहुत मजा आने वाला. यू नो, वो जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया गेम्स और चैलेंजेस हमने प्लान करके रखे हैं और बहुत फन होने वाला है. यू नो, फ्राइडे का मॉर्निंग है सो ज्यादा स्ट्रेस नहीं है कि कैसे चीजें मैनेज होंगी, छुट्टी का दिन है सो जल्दी से रजिस्टर कर लो. रजिस्टर करने के लिए आपने बस इतना करना है, यू हैव टू टाइप OR स्पेस आपके बच्चे का नाम और इसे भेज दीजिए 3311063 पर. क्या कर रहे हैं? OR स्पेस बच्चे का नाम एंड सेंड इट टू 3311063. एकदम इजी पीजी है यार, जल्दी से कर दो, बहुत कम स्लॉट्स हैं, जल्दी रजिस्ट्रेशंस बंद होने वाले हैं तो देर ना हो जाए कहीं. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: 106.3 FM, Gio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

भाई क्या एनर्जी थी, फुल डांस चल रहा था मेरा यहाँ स्टूडियो में. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज द हैंडल. अगर अभी तक फॉलो नहीं किया हमें सोशल मीडिया पर तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. जी हाँ, स्टोरी चेक कर लेना पहले तो जाकर, और फॉलो कर लो फटाफट से, और वहाँ पे कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर लो. यू नेवर नो, यू माइट विन समथिंग. जी हाँ, और बैक टू स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन ऐसे लाइन लग चुकी है मेरे पास, तो बहुत जल्दी बंद होने वाले. एक बार फिर से बता रही हूँ, OR स्पेस बच्चे का नाम लिख कर भेज दे 3311063 पर. फ्राइडे को हम मिलने वाले हैं 4th ऑफ सितंबर को सुबह 9 से 11 बजे रियादा मेडिकल सेंटर में फॉर बैक टू स्कूल जूनियर के क्लब. बहुत मजा आने वाला है, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस. अभी जो लास्ट हुआ था उसमें भी हमने बहुत फन किया, बहुत मस्ती की बच्चों के साथ, बहुत सारी गेम्स खेले, एक्टिविटीज करी, पेरेंट्स से मिलने को मिला. इट इज सच अ सरियल एक्सपीरियंस. यू नो, आप लोगों से यहाँ से बात हो रही होती है, यू नो, आप मैसेजेस करते हैं, अच्छा लगता है, बट वेन वी मीट इन पर्सन दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस यार. तो मैं तो हर बार ना उसके लिए बहुत जोर से एक्साइटेड हो जाती हूँ. So for this one also, looking forward to meet you all and to all the cuties. Sending Sukhvinder Singh ki awaaz mein, Rab ne bana di jodi movie se, hale hale ho jayega pyare. Stay tuned and you, Bindas meri jaan.

0: ताजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलूप पे।
1: You already know what it is.

सोनी कमर श्रेया घोषाल की आवाज में खाकी मूवी से दिल डूबा. एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक. और ऐश्वर्या राय, ओह माय गॉड, गॉर्जियस इन दिस एंटायर मूवी एंड स्पेशली इन दिस ट्रैक. तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर. बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. 9:50 हो चुका है, 51 होने वाला एक्चुअली, और हो गया है मेरे जाने का वक्त. मिलते हैं कल सुबह 6 बजे. आई होप यू गाइज हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ. छोटी मोटी चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है. कुछ बड़ा भी होना तो स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से थोड़ी ना सोल्यूशन मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम का. सो थोड़ा काम हो गए चीज़ों को सोचना है. वो 6 सेकेंड पॉज वाला रूल मैंने बताया ना, बस वही एप्लीकेबल रखना है हर जगह, जहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसे गुस्सा या रिएक्शन निकल रहा हो तो. ठीक है, बाकी सब मस्त है. रेडियो ऑलिव को सुनते रहिए. बढ़िया बढ़िया गाने यहाँ पे लाइन अप है आपके लिए पूरा दिन. जब भी हमसे बात करने का मन हो, 3311-1063 इज द नंबर. आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर लीजिए 4444-1063 पर. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

गुड मॉर्निंग कतर, क्या हाल चाल है? आज का मिड मॉर्निंग ना मैं सोच रही थी थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, ना कोई टेंशन की ब्रेकिंग न्यूज, ना कोई अर्जेंट अपडेट्स, ना लाइफ का अननेसेसरीली सीरियस बनने की जरूरत, ठीक है? बस एक सवाल, आज सुबह जब आप घर से निकले थे तो आपका मूड कैसा था? फ्रेश एकदम, स्लीपी, इरिटेटेड, एक्साइटेड, या वो क्लासिक बस दिन निकल जाए? एक्चुअली ना मुझे लगता है हम अपना मूड बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं, मतलब मंडे है तो मूड ठीक नहीं है, संडे है तो एनर्जी नहीं है, और आज जैसे ट्यूसडे है तो काम ज़्यादा, स्ट्रेस है, और ये सब चीज़ें हम बोल बोल के ना खुद को वैसे ही परेशान कर देते हैं। सो आई वॉज थिंकिंग कि नींद कम हुई तो दिन बुरा, ऐसा नहीं है, बट समटाइम्स मूड ना कोई फिक्स चीज़ तो है नहीं। एक अच्छा गाना, एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज, एक कप चाय और पूरा दिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो चलिए आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपका मूड अभी एक वर्ड में ठीक कर सकते हैं। मुझे आप व्हाट्सएप करके बताइए और बताइए वो कौन सा वन वर्ड है जिसे देखते ही, जिसे सुनते ही आपको लगता है कि आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। सो आज रेडियो ऑलिव के लिसनर्स का कलेक्टिव मूड क्या चल रहा है बताइए मुझे। 3311063 पर शुरू हो चुका है लाइफ मस्त है विद लॉट ऑफ न्यू सॉन्ग्स। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Time check. Time check. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: Ready?
2: Ready.
1: To learn.
2: Yes.
1: To play.
2: Absolutely.
1: To grow.
2: With Maserati.
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: सस्रीकाल जी मैं हां हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास

0: सो एक छोटी सी ना सिचुएशन इमेजिन करो, आप फ्रेंड के साथ डिनर पर हो, खाना आया और किसी ने बोला रुको पहले फोटो, बर्थडे है फोटो, बीच पर हो फोटो, कॉफी ब्यूटीफुल है फोटो, सनसेट ब्यूटीफुल है फोटो, चांद खूबसूरत लग रहा है सबसे पहले फोटो, और कभी कभी तो सनसेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सनसेट की स्टोरी। बट हियर इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या हम मोमेंट को एंजॉय करने से पहले ऑटोमेटिकली सोचने लगे हैं कि इसको कैप्चर कैसे करें? साइकोलॉजी में एक आइडिया है कॉल्ड फोटो टेकिंग इम्पेयरमेंट इफेक्ट, ठीक है। कुछ स्टडीज ने सजेस्ट किया है कि जब हम किसी एक्सपीरियंस को सिर्फ फोटोग्राफ करने पर फोकस करते हैं तो उस एक्सपीरियंस के डिटेल्स को याद रखना कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है। सो आई विल नॉट से कि भाई पिक्चर्स मत लो, पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले उसे फील करो, उसे समझो, उसे देखो और उसके बाद आराम से पिक्चर ले लो। मतलब फोटो के पास मेमोरी हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेमोरी फोटो के पास हो। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने एक और चीज़ चेंज की है। पहले ना हम ब्यूटीफुल मोमेंट्स कहते थे, विश यू अवर हेयर, और ऐसे कहते थे कि यार आज हम कहते हैं कि आप पोस्टेड। सो ऑनेस्टली आप मुझे बताओ कि आप किसी ब्यूटीफुल मोमेंट में फ़ोन निकालते हो या पहले उस मोमेंट को जीते हो और बाद में आराम से कैप्चर करते हो? मेरे पहले क्या आदत थी ना, मैं कहीं पे भी जाऊँ और कुछ मुझे बहुत सुंदर दिख जाए तो मैं फटाफट से पिक्चर्स लेती थी और बाद में उसे फील करती थी, बाद में उसे कैप्चर करती थी। सो वॉट एग्जैक्टली यू लाइक, कैप्चर करना या चीज़ों को लाइव देखना? 3311063 इज माई नंबर। सुन रहे हैं आप लाइफ मस्त है और ये है रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

are listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद

सो बुक लवर्स के लिए आई ऑलवेज थिंक यार कुछ तो नया लेकर जाते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. मैं बहुत ट्राई करती हूं कि किसी किताब के बारे में या किसी किताब के कोई चैप्टर के बारे में बात की जाए. आज की इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में ना किताबें पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो गया है. और एक इंटरेस्टिंग करंट पिक है. सो एक किताब है द कालमिटी क्लब. अभी US हार्ड कवर फिक्शन बेस्ट सेलर लिस्ट में ना नंबर 2 पर है. पिछले महीने यानी कि अगस्त की लास्ट वीक में ही लिस्ट आई थी और उसके हिसाब से मई में बुक रिलीज हुई थी. और मुझे बेस्ट सेलर लिस्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन लगता है. आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जो एक बुक को एडिक्टिव बना देती है? क्योंकि अच्छी किताब का मतलब ना सिर्फ अच्छी स्टोरी नहीं होता. अच्छी किताब वो है जो आपको फोन चेक करने से रोक दे. आज के टाइम में आप बोलते हो कि बस 10 पेजेस पढ़ेंगे, फिर आप 40 पेजेस पढ़ के फिर बोलते हो कि ओके लास्ट चैप्टर, और फिर क्लॉक देखते हो तो रात के 2:15 बज चुके होते हैं. तभी आता है किताब पढ़ने में मजा. लेकिन अब मुझे बुक्स की एक और क्वालिटी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है. कभी कभी बुक हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं देती. इट्स सिंपली गिव अस अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग वी ऑलरेडी नो. सो लव को हम जानते हैं, लॉस को जानते हैं, फ्रेंडशिप को भी जानते हैं, एम्बिशन को भी जानते हैं. लेकिन एक अच्छा राइटर वही जो फैमिलियर चीज आपको इतनी डिफरेंट लैंग्वेज में दिखा देता है कि आप बोलते हो यार ओ मैंने तो इसको कभी ऐसे सोचा ही नहीं था. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कभी सोचते भी नहीं हो और आपको किसी किताब को पढ़ के ऐसा लगता है कि यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है. सो ऐसी कौन सी किताब है, ऐसा कौन सा थॉट जिसने आपको कुछ सिखाया है जो आज तक आपके साथ है, बुक का नाम बताओ. हो सकता है कि हमारे लिसनर्स भी उसके बारे में पढ़ पाएं और हम भी पढ़ पाएं. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: नया महीना स्टार्ट हो चुका है, महीने की पहली तारीख है और मिठाई खाना तो बनता है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि पहली तारीख जब सैलरी आती है, या मुझे लगता है कल ही बहुत सारे लोगों की सैलरी आ गई होगी, सो बहुत ही अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि बस लाइफ में जो आप काम कर रहे हो ना, वो सक्सेसफुल हो गया है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो महीने के आखिरी आते आते ना, जब पैसे खत्म होने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि मोटिवेशन जा रहा है, पर जैसे ही सैलरी क्रेडिट होती है सो सारा एनर्जी सारा मोटिवेशन वापस आ जाता है। सो आई विल से कि पहली तारीख है, मीठा खाना तो बनता है, मैं हर महीने कहती हूँ आपसे। सो आई विल से कि अब इस सितंबर के महीने में ना, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवी मिलने वाली हैं और इवन थिएटर्स में भी। सो तापसी पन्नू की स्टारर एक मूवी है, एक्शन थ्रिलर मूवी, जो कि 3 सितंबर को परसों आ रही है। और स्टोरी में एक मदर जो है वो अपनी बेटी के बारे में, उसको ढूंढने के बारे में ये स्टोरी है। बट मुझे ना मूवी से ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग लगता है, व्हाई डू वी लव रिवेंज स्टोरीज। हीरो को जस्टिस मिलता है, सेटिस्फाइंग लगता है। विलन को पनिशमेंट मिलता है, बहुत सेटिस्फाइंग मिलता है। और जब कैरेक्टर फाइनली बोलता है ना कि अब मेरी बारी, ऑडियंस के अंदर भी कुछ ऐसे क्लिक करता है, क्योंकि रिवेंज स्टोरीज ना ऑफन गिव अस समथिंग रियल लाइफ रेयरली गिव अस। ठीक है, हम रियल लाइफ में तो ये मिल नहीं पाता हमें। सो क्लीन एंडिंग, रियल लाइफ में इंसल्ट का आंसर मंथ्स लेटर नहीं मिलता। सो ऑफिस में अनफेयरनेस का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, और किसी ने आपका दिल तोड़ा तो स्क्रीन ब्लैक होके दी एंड नहीं लिखा आता। सो फिक्शंस में हाउएवर जस्टिस कैन बी परफेक्टली टाइम्ड, इसीलिए हमें ये सब बड़ा मजा आता है देख के। मे बी दैट्स व्हाई रिवेंज स्टोरीज आर सो एडिक्टिव। सो मैं आपको यही बता रही थी कि इस पूरे महीने में आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलने वाली है। आप रिवेंज स्टोरीज देखते वक्त हीरो की साइड होते हो या कभी कभी विलन इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है आपको? व्हाट्सएप पर बताओ मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है लाइफ मस्त है।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, guys.

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

अब एक ना कन्फेशन चाहिए मुझे आपसे। आपने हेरा फेरी मूवी कितनी बार देखी है, वेलकम कितनी बार देखी है, और अंदाज अपना अपना या धमाल मूवी कितनी बार देखी है बताइएगा जरूर। फिर भी जब टीवी पे आ जाए तो चलो 15 मिनट देख लेते हैं, या फिर कोई फैमिली गैदरिंग या दोस्तों के साथ बैठना हो तो फिर से हम कह देते हैं चलो थोड़ी देर देख लेते हैं, और वो 15 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं ना पता नहीं चलता। और इस वीक कॉमेडी लवर्स के लिए धमाल 4 भी OTT पर आ रही है। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स पर 4 सितंबर को शुरू होने वाली है, और फिल्म्स जो है वो ओरिजिनली जुलाई 10th को थिएटर्स में तो रिलीज हो ही गई थी। बट व्हाई डू वी रीवॉच कॉमेडी व्हेन वी ऑलरेडी नो कि सारे जोक क्या होंगे, क्योंकि लाफ्टर इज नॉट ऑलवेज अबाउट सरप्राइज, समटाइम्स लाफ्टर इज अबाउट फैमिलियरिटी। मतलब मुझे भी कई बार ऐसा लगता है यार कि कुछ देखा हुआ है वो ज्यादा बेटर है कुछ बेकार देखने से। सो आपको डायलॉग पता होता है, स्क्रीन पता होती है, पंचलाइन पता होता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि चलो आप हंसोगे कम से कम, लेकिन योर ब्रेन ऑलरेडी एसोसिएट दैट सीन विद कंफर्ट। सो अभी मैं आपको ना पूरे लाइन से बताऊंगी कि सितंबर में कौन कौन सी OTT रिलीज है जो आपको देख के बड़ा मजा आने वाला है। आपकी वो वन कम्फर्ट मूवी कौन सी है जो आप 100 बार देख सकते हो मुझे बताओ फटाफट से, और अगर आंसर हेरा फेरी है तो भी जरूर बताना। वैसे बाय द वे ना, जब भी मैं ऐसा सवाल पूछती हूँ तो अंदाज अपना अपना लोग जरूर लिखते हैं। आप मुझे बताइए आपकी फेवरेट मूवी। सो 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, ये है लाइफ मस्त है।

0: सो फैशन लवर्स के लिए अगर बात की जाए तो थोड़ा ना वार्डरोब की बात कर लेते हैं। फॉल 2026 फैशन में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखा जा रहा है। पिछले कुछ सीजन में मिनिमलिज्म, न्यूट्रल कलर्स और क्वाइट लग्जरी काफी डोमिनेंट रही है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। अब पिछले कुछ सीजन में आपने ये सब देख ही लिया, लेकिन फॉल 2026 कलेक्शन में डिजाइनर्स ने कलर को काफी स्ट्रांगली ब्रिंग बैक किया है। इलेक्ट्रिक ब्लू, रेड कलर, बटर येलो, पर्पल कलर, बर्गंडी कलर और ऐसे टर्कोइज जैसे हाइलाइटेड शेड्स जिन्हें कहते हैं, और कलरफुल रेट्रो जो कह सकते हो आप, वो वापस आया है फॉल 2026 में। बट फैशन का रियल क्वेश्चन ये है कि इस सीजन का कलर क्या है। रियल क्वेश्चन है कि हम कलर से डरते क्यों हैं भाई। कितनी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है लाइफ, मतलब बेज कलर, नेवी कलर, डार्क कलर्स में आ गई है लाइफ। ब्लैक सेफ लगता है, बेज बहुत सोफिस्टिकेटेड लगता है, वाइट क्लासी लगता है, लेकिन भाई ये कलर्स पहन के तो देखो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, तो मैं सच बता रही हूँ, लोग भी वो कलर्स देख के बहुत खुश होने वाले हैं। मे बी फैशन का बेस्ट पार्ट ट्रेंड फॉलो करना तो नहीं है, पर मूड को वेयर करना है। कभी यू नो आपका जो मन करे वो कलर पहनिए और देखिए कि कितना अच्छा फील होगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और आप मुझे बताइए कि लास्ट टाइम कब आपने ऐसे कलरफुल शॉपिंग की थी। 3311063 इज माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

सितंबर की पहली तारीख है आज और बॉलीवुड के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो रहा है. सो सितंबर 3rd को गांधारी आ रही है, उसके बाद आप देखोगे मिर्जापुर रिलीज हो रही है 4th को, और फिर आ रही है जीवन बीमा योजना सितंबर 4th को ही. सो मिर्जापुर के फैंस के लिए फिल्म ऑफिशियली सितंबर 4th को सिनेमाज में हिंदी और तेलुगु में रिलीज हो रही है. बट एक फनी फिनोमिनन है, ट्रेलर आता है हम बोलते हैं और ये तो बहुत ही ब्लॉकबस्टर होगा, फिल्म रिलीज होती है हम देखते हैं और हम हाइप को भी कंज्यूम करते हैं. ट्रेलर ब्रेकडाउन, रिएक्शन वीडियोज, इंस्टाग्राम एडिट्स, सॉन्ग्स, मीम्स, समटाइम्स ना मूवी से पहले ही हम उसके बारे में 20 वीडियो देख चुके होते हैं और कई बार तो पूरे रिव्यूज भी पढ़ चुके होते हैं, एंड देन थिएटर में जाकर सरप्राइज नाम की कोई चीज बचती नहीं है. सो आई वॉन्ट टू नो कि आपको मूवी का ट्रेलर देखना पसंद है या फिर बिना कुछ जाने थिएटर्स में जाना, व्हाट्सएप करके बताओ. कई बार तो ऐसा होता है मैं भी यू नो रिव्यूज पढ़ के जाती हूँ बट मुझे फिर ना मूवी देखने में मजा नहीं आता, ऐसा लगता है यार सब तो पता है. सो विच पर्सन यू आर, नो स्पॉइलर, डायरेक्ट मूवी देखने वाले या फिर ट्रेलर को देख के रिव्यूज पढ़ के फिर मूवी जाने वाले? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है लाइफ मस्त है.

सो इंटरनेट पर ना टाइम टू टाइम ऐसे फ्रेजेस पॉपुलर होते रहते हैं. अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग सॉफ्ट लाइफ पसंद कर रहे हैं, स्लो मॉर्निंग्स, लेस स्ट्रेस, बाउंड्रीज होनी चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए. और पहले मुझे लगा कि अच्छा इंस्टाग्राम का एक और एस्थेटिक ट्रेंड आ गया. बट थोड़ा सोचिए, एक टाइम पर इंटरनेट ना हमें बोलता था कि वेक अप एट 5, वर्क हार्डर, कम सोइए, हसल कीजिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए. जो ये 30s वाली लाइफ है, यही एक्चुअली अर्न करने का टाइम है. पर अब कॉन्वर्सेशन चेंज हो रहा है. लोग पूछ रहे हैं, पर क्यों, वाई शुड एग्जॉशन ऑटोमेटिकली मीन एम्बिशन भाई? वाई डज बींग बिजी मेक अस फील इंपॉर्टेंट? नहीं, इतना बिजी होने की जरूरत नहीं है. हमें पता है कि हम 10 घंटे स्क्रीन के आगे बैठ जरूर जाते हैं, पर काम उतना ही करते हैं जितना हमारा दिमाग चलता है. मे बी ना सॉफ्ट लाइफ का एक्चुअल मीनिंग एक्सपेंसिव कैंडल्स या फिर मॉर्निंग कॉफी नहीं होता. इट सिंपली मीन्स कि भाई आपको ना थोड़ा सा सक्सेसफुल होने के साथ साथ एनर्जी और इंजॉय करने की भी जरूरत है. और ये लाइन मुझे काफी पावरफुल लगती है, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन भी तो चेंज हो सकता है. अर्लियर हम बोलते थे कि आई हैव मोर, मे बी नाउ हम बोलते हैं कि आई नीड लेस. कितना मिनिमलिस्ट हो गई है लाइफ. तो आप मुझे बताओ, आपके लिए सक्सेसफुल लाइफ का मतलब क्या है? ज्यादा पैसे, ज्यादा टाइम या फिर ज्यादा पीस? व्हाट्सएप नंबर है 3311063. मैं हूँ मुस्कान और ये है रेडियो ऑलिव पर लाइफ मस्त है.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: Guys, this is Jonita Gandhi.
4: Jonita Gandhi.
5: Radio Olive, I'm a number one.
3: You are listening to me on Radio Olive.
4: Radio Olive.
3: Gio Bindas.
5: Radio Olive, I'm a number one.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

0: अच्छा, एक थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। आपका इंस्टाग्राम एल्गोरिदम ना आपको कितना जानता है? आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है, कौन सा कंटेंट रोक के आप देखते हो, किस टाइप की वीडियोस आप रिपीट करते हो, क्या सर्च करते हो, क्या खरीदते हो, और कभी कभी ना एल्गोरिदम लिटरली बोल भी देता है कि दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू वर लुकिंग फॉर, राइट? बट इमेजिन कीजिए अगर एल्गोरिदम आपकी रोमांटिक लाइफ भी अंडरस्टैंड करने लगे तो, क्योंकि हम खुद बोलते हैं नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट समवन कम्प्लीटली डिफरेंट, और फिर सेम पर्सनैलिटी सेम फेसेस। मे बी वी डोंट चूज पीपल बेस्ड ओनली ऑन वॉट वी वॉन्ट। कभी कभी ना हम चूज करते हैं फैमिलैरिटी, मतलब कुछ फैमिलैरिटी तो होनी चाहिए ना, जो मिलती जुलती चीज़ें हों, एंड दैट्स अ मच मोर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं, क्यों करते हैं हमें नहीं पता, क्लियरली उन्हें दिख रहा होता है, हमें भी दिख रहा होता है, मे बी क्योंकि अट्रैक्शन एंड कंपैटिबिलिटी आर नॉट द सेम थिंग। और आज का ऑनेस्ट व्हाट्सएप क्वेश्चन भी यही है कि आपका बिगेस्ट रिलेशनशिप रेड फ्लैग क्या है, जो मतलब चाहे दोस्तों में हो चाहे कलीग्स में हो, और आपको लगता है कि यार ये ना मतलब ये मेरे लिए रेड फ्लैग है। अगर आपने किसी के सामने आपकी इंसल्ट की या फिर किसी चीज़ को लेकर आपको कुछ कह दिया, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है ये तो मेरे लिए रेड फ्लैग है, और आप फटाफट से नोटिस कर लेते हो, बट फिर आपको लगता है कि यार ठीक है, इट्स फाइन, साथ में रहते हैं, कॉलीग्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, इतना तो चलता है। सो यू टेल मी कि आपके लिए क्या है रेड फ्लैग। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

सो एक चैलेंज है, अगर आप सुबह उठो और आपका फोन जो है वो कम्प्लीटली डेड हो जाए और चार्जर भी ना मिले, तो पहले 30 मिनट में आप क्या करोगे? ब्रेकफास्ट, वॉक, या किताब पढ़ोगे, या किसी से बात करोगे जो आपके आसपास है, या फिर फोन को ही 17 बार ऑन करने की कोशिश करोगे? हम फोन को ना टूल समझते हैं, बट फोन अब सिर्फ टूल नहीं रहा, इट इज लाइक आर कैलेंडर। एंटरटेनमेंट उसमें है, कम्युनिकेशन उसमें है, कैमरा है, न्यूज है, शॉपिंग है, इवन बैंक्स और मैप्स भी उसी में है, और यादें तो है ही। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि बोर्डम का एनिमी भी वही है। सो हम लिटरली ना बोर्ड होने का एक्सपीरियंस भूल से गए हैं, बट बोर्डम एक्चुअली यूजफुल हो सकता है समटाइम्स। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। और कभी कभी वही चीज़ें आपको आइडिया देती हैं, जैसे कि छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अब 30 मिनट के लिए अगर फ़ोन बंद हो जाए, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई स्क्रोलिंग है, ना कोई नोटिफिकेशन है, बस आप और आपके थॉट्स हैं, तो व्हाट्सएप पे मुझे बताओ कि आप 24 घंटे फ़ोन के बिना सर्वाइव कर सकते हो, येस और नो? बस, और नो वालों के लिए डोंट वरी, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और कोई जजमेंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं भी, मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे बिना फ़ोन के रह पाऊंगी। सो टेल मी 3311063 पर। You are listening Radio Olive, और ये है Life Must Have।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
3: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.

आज का शो ना बड़ा फन था, इतने सारे मैसेजेस आए, ना कोई अपडेट्स थी, ना कोई यू नो न्यूज थी, बस मैं और आप बातें कर रहे थे और उसमें इतने सारे कॉन्वर्सेशन हो गए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो आज का जो लास्ट थॉट है वो थोड़ा सा सीरियस है. हम ग्रोइंग अप को ना यूजुअली कैसे डिफाइन करते हैं? ज्यादा पैसे, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर नॉलेज, मोर एक्सपीरियंस. लेकिन शायद ग्रोइंग अप का एक दूसरा साइड भी है, लर्निंग वॉट टू लेट गो. भाई कई बार ऐसा कहा जाता है कि सीखने से ज्यादा कई बार अनलर्न भी करनी होती है चीजें. हर आर्ग्यूमेंट का रिप्लाई देना जरूरी नहीं होता, हर दोस्ती को लाइफ टाइम तक कैरी करना जरूरी नहीं होता, हर अपॉर्चुनिटी जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी नहीं होता, और इंसान को प्लीज करना भी जरूरी नहीं होता. और सबसे इंपॉर्टेंट, हर पुराने वर्जन को, योर सेल्फ को बचा कर रखना भी जरूरी नहीं होता. कभी कभी ग्रोथ का मतलब कुछ नया पाना नहीं होता, इट सिंपली मीन्स कि ये अब मेरे लिए नहीं है, और फिर गिल्ट के बिना उसे छोड़ देना, यही बेस्ट चीज है भाई. सो टुडेज फाइनल व्हाट्सएप क्वेश्चन इज कि अगर आपको अपनी लाइफ से वन थिंग बिना किसी गिल्ट के डिलीट करने की परमिशन मिल जाए तो आप क्या डिलीट करोगे? कोई आदत, कोई डर, कोई रिलेशनशिप, कोई बिलीफ, या फिर कुछ ऐसा जो आप बताना चाहते हो? व्हाट्सएप करके बताओ 3311063 पर. दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, लेकिन कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर विद लॉट ऑफ न्यू कॉन्वर्सेशन एंड ब्यूटिफुल म्यूजिक. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: स्कूल्स खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
3: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा, कतर।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
4: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
5: हाय, आई एम राजकुमार राव।
6: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
7: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Here we go.

0: खाना खत्म पैसा हजाम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
0: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyada Medical Center.
2: JCI Accredited Riyada Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyada Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning.

आप सभी का स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदे और चलिए शुरू करते हैं आज के ऑलिव रिचार्ज को। गाने प्ले करते हुए, किस्से सुनाते हुए, खबरें शेयर करते हुए, बातें करते हुए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताते हुए। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन. नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन. आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं जरा घड़ियों के बारे में बात करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मुझे घड़ियां बहुत पसंद हैं और घड़ियों के बारे में जानना, सर्च करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एक घड़ी खरीदना चाहते हैं तो ब्लाइंड बाई मत कीजिए। किस तरीके की घड़ी आपके लिए सही रहेगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, आपके हाथ का जो साइज है यानी कि आपका जो रिस्ट साइज है उसके हिसाब से ही घड़ी लेना है। कई बार लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े डायल वाले घड़ी ले लेते हैं और उनके छोटे छोटे हाथों में पहन लेते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। एक प्रोपोर्शन में जब घड़ी आती है तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कूल लगता है। और उसके लिए क्या करना है आपको, आपको अपना जरा रिस्ट साइज देखना है। अगर 6.5 इंच से छोटा है आपका रिस्ट तो 38-40 mm डायमीटर वाला आप एक वॉच खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रिस्ट साइज बड़ा है देन यू कैन इजीली गो फॉर बिग वॉचेस, यानी कि बड़े डायल वाले वॉचेस के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप एवरीडे कैजुअल वेयर रख रहे हैं अपने माइंड में तो फिर स्पोर्ट्स वॉच या फिर फील्ड वॉच बढ़िया रहते हैं, क्योंकि ये थोड़े रगड होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं और कैनवास या फिर रबर स्ट्रैप के साथ ही आते हैं। जिस दिन आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं उस टाइम के लिए आप जरूर इन वॉचेस को पहन सकते हैं। और क्वार्ट्ज मूवमेंट वाला लेना, यानी कि बैटरी वाला वॉच लेना, ताकि बहुत ही कम आप उस वॉच पे ध्यान दो और बहुत लंबा ये वॉच जो है चले, यानी कि लो मेंटेनेंस एंड हाई ड्यूरेबिलिटी फॉर डेली यूज। एक फॉर्मल या फिर एक बिजनेस वेयर के लिए आपको घड़ी चाहिए तो ड्रेस वॉचेस बहुत अच्छे हैं। एक काफ़ी थिन सा एक वॉच, सिंपल सा वॉच, एक लेदर वॉच, लेदर स्ट्रैप वाला वॉच जो है आप ले सकते हैं, या फिर थोड़ा एक वर्सेटैलिटी के लिए आप एक डाइव वॉच के लिए जा सकते हैं जिसमें स्टील चेन के साथ जो आता है, तो वो एक प्रॉपर ऑफिस या फिर बिजनेस सेटिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और एक डिनर टेबल में भी आप बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे लुक के साथ अपने मैच कर सकते हैं। और यही बात बताते हैं हम जरा आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कैसे वॉचेस को सेलेक्ट करना है अपने पसंद के हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से। तो अब जरा बात करते हैं वॉच एंथुजियास्ट का क्या कहना है डिजिटल वॉचेस के बारे में। डिजिटल वॉचेस के बारे में नहीं, एक्चुअली स्मार्ट वॉचेस के बारे में। तो स्मार्ट वॉचेस के बारे में जो है एंथुजियास्ट यही कहते हैं कि भाई ये बेसिकली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है विद अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। ठीक है, एक मैकेनिकल वॉच की तरह लाइफ लॉन्ग हेयरलूम क्वालिटी नहीं है इनमें। और उसके साथ साथ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसमें सोल नहीं है, रूह नहीं है, आत्मा नहीं है। और ट्रेडिशनल कलेक्टर्स बोलते हैं कि भाई जो प्रॉपर मैकेनिकल वॉचेस होते हैं वो माइक्रो इंजीनियरिंग उसमें हमें देखने को मिलता है, उसके गियर्स में एक हिस्टोरिकल हेरिटेज है मैकेनिकल मूवमेंट्स में। ये सब हमें मास प्रोड्यूस्ड डिजिटल स्क्रीन में नहीं मिलेगा, एक आर्टिस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप जो है नहीं मिलेगा करके। मगर कुछ कुछ एंथुजियास्ट हैं जो एक कॉमन पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई उन्हें मैकेनिकल वॉचेस भी पसंद हैं, बिल्कुल एक हिस्टोरिकल रिलेवेंस के साथ या फिर एक हिस्टोरिकल क्राफ्ट्समैनशिप के साथ। वो आजकल के ज़माने का एक कन्वीनियंट डिजिटल टूल भी यूज़ करना पसंद करते हैं। तो एक हाथ में वो क्या करते हैं, प्रॉपर वॉच पहनते हैं, और दूसरे हाथ में स्मार्ट वॉच या फिर स्मार्ट बैंड पहनते हैं अपने डेली हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए, हेल्थी हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए। और आपका टेक क्या है इसमें? आप एक प्रॉपर ऑथेंटिक क्राफ्ट्समैनशिप वाले वॉच को ज़्यादा पसंद करते हो या डिजिटल स्मार्ट वॉच को, या दोनों को? बताइए मुझे मैसेज करके 3311063 पर। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सभी से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, आज के दिन के लिए पॉसिबल हो तो आज के दिन के लिए आप अपने स्मार्टफोन को हटा के रखिए, ठीक है। आप अपने ऑफिस में अपने किसी कलीग को या फिर अपने पार्टनर को या फिर अपने किसी फ्रेंड को एक हैंड रिटन नोट दीजिए। लेटर भेजना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आजकल के जमाने में, मगर अगर वो कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, मगर एक हैंड रिटन नोट जरूर भेजना क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज है वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे। 2014 से इस दिन को ऑब्जर्व करना शुरू किया था ताकि लोग जो है डिजिटल स्क्रीन के सामने से हटे, फोन से हटे, स्मार्टफोन के सामने से हटे, एक प्रॉपर वेल मीनिंग वाला बहुत ही प्यार से लिखा हुआ एक हैंड रिटन नोट लिख किसी को दे या फिर लेटर किसी को दे, और उसका वैल्यू बहुत अलग है, उसका डेप्थ बहुत अलग है, क्योंकि किसी के लिए बैठ के लिखना इज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। पेन उठाना, पेपर उठाना, उसके बाद सोचना, उसे लिखना, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बार अपने चीज़ों को काट के फिर से लिखते हैं, ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कई बार होती है उसकी। तो इट्स अ स्पेशल थिंग टू डू फॉर समवन। अगर आपके लाइफ में आज अपने किसी स्पेशल वन को आप एक सरप्राइज देना चाहते हैं तो डू दिस। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
0: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
4: Hi, I'm Suhali Khan, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
5: I'm the number one, Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
7: Olive laga aur ho ja richa.
8: Olive Richard.
9: Olive Richard. Radio Olive 106.3 FM par, Jio Bindas.
8: Olive Richard.
10: This hour is brought to you by
11: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप अपने बच्चों को फन करवाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मस्ती करवाना चाहते हैं, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी सिखाना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली साइन देम अप फॉर बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब बाई रयादा मेडिकल सेंटर, जो 4 सितंबर को होने वाला है, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहेगा बच्चों के लिए। तो साइन अप करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको मैसेज करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर में, विच इज 3311063। तो उस पर आप OR स्पेस अपने बच्चे का नाम और हमें हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। नंबर मैं फिर से याद दिलाता हूँ, 3311063। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी रजिस्टर कीजिए और सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को एक कॉल बैक जाएगा। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं बात करना चाहूंगा कैसे आप अपने वर्क स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, वर्क प्लेस के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इमीडिएट कुछ रिलीफ टेक्निक्स हैं जैसे कि डीप ब्रीदिंग, अपने वर्क स्पेस को थोड़ा क्लियर करना, डीक्लटर करना, अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करना ताकि आपको इमीडिएटली थोड़ा अच्छा महसूस हो। डेली हैबिट्स जो आप यूज कर सकते हैं उनमें से एक है एक सिंपल सा लिस्ट बनाना, मल्टीटास्किंग खत्म करना। भाई आजकल के जमाने में लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग करना बहुत कूल है, मगर वही हमारे ब्रेन पर इतना प्रेशर डाल रहा है कि टाइम पे एक ही टास्क उठाइए, उस पर करिए अच्छे से। और एक चीज आप कर सकते हैं वो है सेटिंग फर्म बाउंड्रीज। थोड़ा मुश्किल हो सकता है मगर बहुत बढ़िया चीज है। और उसके साथ साथ आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि बहुत प्रेशर हो रहा है या फिर स्ट्रेस हो रहा है, प्लीज डू समथिंग। दिखते हैं वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। और एक और बहुत ही बढ़िया तरीका है, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में, तैयार हो जाइए। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कैसे आप अपने वर्क प्लेस के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और एक मैंने तरीका बोला था कि मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो वक्त आ चुका है गाइस, तरीका यह है कि आप रेडियो ओलिव की टीम को अपने ऑफिस में इनवाइट कर सकते हैं, जहां पे रेडियो ओलिव की टीम आपके पास आएगी, फन करेगी, चिल करेगी, आपके सारे स्ट्रेस को बहुत ही आराम से निकाल देगी, बहुत सारे फन गेम्स खेलेगी, एंटरटेन करेगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मैसेज भेजना है हमारे व्हाट्सएप में। आपको मैसेज करना है HL स्पेस आपके कंपनी का नाम और नंबर है 3311063। आप हमें सेंड कीजिए मैसेज, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ हैप्पीनेस लॉन्च की, जहां पे हम आपके ऑफिस आएंगे, आपको रिचार्ज करेंगे, री एनर्जाइज करेंगे, आपके पूरे स्ट्रेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाल देंगे। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM, ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
4: ਆਲ ਆਫ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।
5: ਹਮੇ ਲਗਾ ਔਰ ਹੋ ਜਾ ਰਿਚਾਰਜ।
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: आज एक्सीडेंटल इन्वेंशंस में हम बात करेंगे चॉकलेट चिप कुकीज के बारे में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो बात करते हैं हम रूथ ग्रेव्स वेकफील्ड और उनके हस्बैंड केनेथ के बारे में, जो मैसाचुसेट्स में एक टोल हाउस चलाते थे। अब वहां पे इनकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया थी क्योंकि बहुत बढ़िया खाना बनाते थे और जो भी लोग उनके इनमें आते थे उनके कुकिंग से काफी इंप्रेस हो जाते थे। एक बार क्या हुआ, 1930 में वो चॉकलेट कुकीज बनाने की कोशिश कर रही थी मगर उनके पास बेकर्स चॉकलेट खत्म हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक नेस्ले का चॉकलेट बार पड़ा हुआ था, एक सेमी स्वीट चॉकलेट बार पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको काट के अपने डो में मिक्स करके कुकीज बनाने के लिए बेक करने के लिए रख दिया। उन्हें लगा कि भाई ये मेल्ट हो जाएंगे चॉकलेट, मगर जब कुकीज बाहर आए तो उन्होंने देखा कि चॉकलेट मेल्ट हुआ नहीं है, उसने अपने शेप को भी रिटेन किया है और थोड़ा गुई गुई सा टेक्सचर हो गया जो कस्टमर्स को बहुत पसंद आने लगा। इतना ज्यादा वो पसंद आने लगा कि काफी न्यूज़पेपर्स में इसकी चर्चा हुई, इवन रेडियो शो में भी इसके बारे में बात किया। फाइनली रूथ ने क्या किया, एंड्रू नेस्ले जो नेस्ले कंपनी के ओनर थे उनके साथ एक डील जो है उन्होंने साइन किया, जहां पे नेस्ले ने उन्हें लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ सेमी स्वीट चॉकलेट देने की बात की इन एक्सचेंज फॉर रेसिपी जो नेस्ले के लेबल में प्रिंट की जाएगी। और यही कहानी बताते हैं हम भी, जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप रियादा मेडिकल सेंटर की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया बैक टू स्कूल इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे बच्चे फन भी करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी सीखेंगे। रजिस्टर करने के लिए आप मैसेज कीजिए 3311063 पर अपने बच्चे का नाम और उसके पहले एक ओआर भी आपको डालना है। तो फॉर्मेट है ओआर स्पेस अपने बच्चे का नाम, सेंड कर दीजिए 3311063 पर, क्योंकि ये है बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब बाय रियादा मेडिकल सेंटर। तो यही याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
0: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय करके गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, पार्टी अभी बाकी है, मगर मेरा वक्त यहाँ खत्म होने वाला है। मगर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने खास लोगों का ख्याल रखिएगा, और हमें जरा दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।

वरुण धवन एट हिज पीक, मतलब वरुण धवन जितने क्यूट जो है इस टाइम पर लगे, इस मूवी के टाइम पर लगे, मुझे नहीं लगता इससे पहले और कभी क्यूट लगे थे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहां पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को, यानी एकदम बेसिक इवनिंग्स को जो है जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा लिया है। यानी अब आपकी जो इवनिंग्स हैं, यानी जो आपके ऑफिस से घर जाने का जो टाइम है, वो बोरिंग नहीं होने वाला है। आपको एक कंपेनियन मिल चुका है, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया वाली, यू नो, स्वैग वाली कंपेनियन मिल चुकी है। So, देखिए आज का जो मूड है, जो माहौल है, वो बिल्कुल सेट होने वाला है। बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड अगर आज से या कल से आने वाले टाइम से आपके बच्चे जो है वो स्कूल वापस जाने वाले हैं, बैक टू स्कूल होने वाला है उनका, सो फिर उसके लिए भी एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कुछ एडवाइस जो है वो आपके लिए लेकर आई हूँ। बाकी बॉलीवुड की, फैशन की, हर चीज़ की बात होने वाली है यहाँ पर। बस आपको वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करते रहना है। फिलहाल पिया घर आया गाना जो है इसे एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा घर पे जो कह रहा होगा मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया। आवारापन 2 से ही गाना एंजॉय करो, बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: trek. Brought to you by Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 5:10 दैट इज 5:10 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
2: सुनो सुनो सुनो
3: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
4: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
3: द वेट इज फाइनली ओवर बी रेडी टू शॉप
5: मैं हूं अनिल कपूर रेडियो ओलिव जियो विंडास
6: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो विंडास
7: Zabardast evening. Make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: आप सही से बताओ, इस गाने की जो ट्यून है, जो म्यूजिक है, वो थोड़ा थोड़ा चांदनी ओ मेरी चांदनी ऐसा नहीं लगता है? क्या मैं अकेली हूँ जैसे ऐसा लग रहा है? हो सकता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ। एंड यार देखो क्या है कि आई नो आप बहुत थक गए होगे आज ऑफिस में काम करके एंड पूरा दिन बिता के ऐसे भी थक जाता है इंसान, पर आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं है हाय हेलो गुड इवनिंग लिखने की। लेकिन मेरे लिए बस इतनी सी जहमत उठा दो, ऑडियो नोट भेज दो यार, कितना टाइम लगता है। आप जो है एक मैसेज करोगे और मुझे फील गुड होने लग जाएगा। सो प्लीज़ एक मैसेज हाय हेलो या गुड मॉर्निंग या जो आपको लिखना हो आप वो लिख के भेज सकते हो मुझे। लेकिन क्या है ना कि आपकी इवनिंग को गुड बनाने के लिए, ज़बरदस्त बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो इवनिंग है उसे भी तो गुड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आप लोगों पर। तो प्लीज़ जल्दी से एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज मुझे कर दो। खैर मौसम की बात जो है वो हमें करनी थी, सो मौसम की बात कर लेते हैं। आज जब मैं आ रही थी ना ऑफिस, सो जो गाड़ी थी वो पूरी तरह बंद थी, एसी चल रहा था अंदर, एंड बाहर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तभी मैंने देखा कि एक पेड़ बहुत ज़ोर से हिल रहा है, एंड फिर मैंने उसके पीछे जो फ्लैग्स लगे हुए थे वो भी हिलते हुए देखे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हवा तो बहुत तेज़ चल रही है, एंड फिर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि कल जब मैं आपको बता रही थी कि आज विंडी रहने वाला है, यानी बहुत तेज़ हवा चलने वाली है, तो वो बिल्कुल सही है। सो आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है बाहर, 38 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर हो रहा है, हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 34 डिग्री सेल्सियस आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है, 5:53 पर सनसेट जो है वो आज होने वाला है, यानी सूरज ने डूबना जो है वो शुरू कर दिया होगा। सो जल्दी से अपना कैमरा उठाइए, एक प्यारी सी फ़ोटो मेरे लिए ले लीजिए आसमान की, क्योंकि इस वक्त आसमान का कलर सबसे ज़्यादा प्रिटी होता है। सो मुझे एक वॉलपेपर वर्दी फ़ोटो दे दीजिए जल्दी से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब तक आप जो है ज़बरदस्त हिट गाना जो है वो भी सुन सकते हैं। सो वॉल्यूम बढ़ाइए और आपकी कशिश के साथ ये जो गाना है ये इन्जॉय कीजिए, बाकी लौट कर आइए। बहुत अमेजिंग चीज़ें, बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
3: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप जस्ट

गाइज नाउ दिस इज समथिंग दैट्स कॉल्ड चटपटा. चटपटे गाने जो है अगर उसकी लिस्ट बन रही है तो ये गाना उसमें बिल्कुल होना चाहिए. वेलकम जी 106.3 रेडियो एफएम. मैं हूँ आपकी कशिश. शो आपके लिए जो है लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने

असमीर जी, आसमा जी ने ऑडियो भेजा है जो मैंने सुना है ना, आसमा जी आई किड यू नॉट, मैं भी सिमरन को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, लेकिन वो वादियों में है, वो शायद हमें मिस नहीं कर रही है, लेकिन जल्दी आ जाएंगी, तब तक जो है हम आपकी इवनिंग को जबरदस्त बनाएंगे। एंड गुड इवनिंग जी लिखा है तुलसी जी ने, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद मोहम्मद यूसुफ खान जी ने हैप्पी थर्सडे, हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग, और थर्सडे मुझे दिन ही याद नहीं रहते यार आजकल, हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग जो है मोहम्मद यूसुफ खान जी ने लिखा है, थैंक यू सो मच यूसुफ जी मुझे याद दिलाने के लिए कि आज ट्यूसडे है। उसके बाद जैन अली जी ने भी एक बहुत प्यारी सी फोटो भेजी है, आसमान जो है वो थोड़ा ओम्ब्रे काइंड ऑफ लग रहा है, थोड़ा सा ब्लू थोड़ा सा ऑरेंज, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने और भी फोटोज भेजी है, थैंक यू सो मच, आप लोग कितने स्वीट हो यार। सो ऐसे ही जो है आपके मैसेजेस पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, एंड एक बहुत ही प्यारा गाना जो है आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर सोनू निगम जी की आवाज में। ये थोड़ा अंडररेटेड गाना है, लेकिन आप एक बार सुन के देखिए, इतने आसान लिरिक्स लिखे हैं लेकिन वो बहुत डीप है, मतलब कोई बहुत ही टफ उर्दू नहीं यूज हुई है, टफ हिंदी यूज नहीं हुई है, लेकिन आपको ये गाना सुन के बहुत मजा आएगा। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटूई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
2: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
2: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyadhar Medical Center.
3: JCI Accredited Riyadhar Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyadhar Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
5: Baatein nahi. एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

किस्मत टू का ही गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जो है जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पे उठा रखा है। अब देखिए यार, अगर आप वो पेरेंट हैं जो अपने बच्चे को जो है स्कूल आज भेज चुके हैं या अब जो है भेजने वाले हैं आगे बैक टू स्कूल के चलते, तो फिर यार देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या है ना कि अगर बच्चों का मूड स्कूल जाने से पहले ठीक नहीं होगा ना, तो वो स्कूल जाएंगे तो भी परेशान रहेंगे। इसलिए बेटर है उन्हें जो है स्कूल जाने से पहले कुछ बेसिक एटिकेट्स सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन की इंपॉर्टेंस सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उन्हें खुल के खेलने का मौका देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यही सब चीज़ें जो है आपको करने में मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर कैंप रियादा मेडिकल सेंटर के साथ मिलकर, जहां पर आपको अपने बच्चे को जो है बस रजिस्टर करना है और फिर उसे फ्राइडे को यानी 4th of September को लेकर आना है रियादा मेडिकल सेंटर सुबह 9 बजे, जहां पर आपके बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे गेम्स मिलेंगे, फन होगा, मस्ती होगा, एंड साथ में बहुत सारे यानी बहुत बहुत बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे। सो क्यों ना अपने बच्चे को आज ही रजिस्टर आप करा दें। रजिस्ट्रेशन भी बहुत ईजी है, आपको जो है सिर्फ व्हाट्सएप करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 3311063 पर OR लिखकर अपने बच्चे का नाम exactly. और फिर आपको कंफर्मेशन के लिए जो है वो हमारे साइड से कॉल आ जाएगा। तो 3311063 ये जो हमारा नंबर है, इस पर जल्दी से अपने बच्चे का नाम OR लिखकर जो है जल्दी से मैसेज कर दो एंड जो है हमसे मिलने के लिए और बहुत सारा फन करने के लिए आ जाएगा रियादा मेडिकल सेंटर इस फ्राइडे को। फिलहाल आवारापन 2 से एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।

0: लाइगर मूवी से आफत गाना आपने इंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो जो है आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग. और देखो यार, अगर आपके बच्चे जो है वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जो है आज आपके लिए ये जो शो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर जो है इंजॉय कीजिए बैक टू स्कूल जूनियर के क्लब में, जहाँ पर हम जो है बहुत ही अमेजिंग बातें जो है वो करने वाले हैं. अब देखिए यार, क्या होता है ना कि हमने बच्चों को सारी चीज़ें दिला दी जो भी उनके स्कूल जाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी सारी तैयारी जो है वो एज अ पेरेंट आपको भी करनी चाहिए. यानी इसके लिए बात करने के लिए, इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ परिंदा मेहता है इस वक्त, जो बहुत ही मतलब क्वालिटी फैक्ट्स आपको बताने वाली हैं पेरेंटहुड के बारे में. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. परिंदा मेहता जो है वो प्लैनेट स्क्रिबल की बिजनेस डायरेक्टर हैं एंड उन्होंने पेरेंटहुड पे काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो भी कर रखी है. सो परिंदा वेलकम. एंड मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहती हूँ कि यार देखो, हमने स्टेशनरी खरीद ली है, कल बच्चे जो है वो स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी और कौन सी तैयारी होती है मेंटली, या ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है बच्चों को यू नो स्कूल भेजने से पहले.
1: सबसे बड़ी बात चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें जो बच्चों को खुद करनी चाहिए आज की तारीख में वेरी लिमिटेड पेरेंट्स, जैसे आयनिंग द क्लोथ्स. जैसे हमारे उधर तो इस्त्री वाला आके स्कूल यूनिफॉर्म इस्त्री करता है, बट आयनिंग द क्लोथ्स एक 10 साल का बच्चा आराम से अपने आप स्कूल यूनिफॉर्म को कर सकता है, नहीं लेकिन नहीं करता. वो अपनी बैग को खाली करके एम्प्टी द बैग, पुट द फ्रेश बुक्स, प्रॉपरली क्लीन द बैग, वाइप द थिंग, इट्स नॉट हैपनिंग. सो दिस इज समथिंग विद पेरेंट्स आर अल्लाह बिकॉज दे हैव वन चाइल्ड, दे डोंट वांट टू गो, और मे बी टू चाइल्ड, और दे हैव अ हाउस हेल्प. दीज आर थिंग्स अगर वो अभी करेंगे सो इन फ्यूचर दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स व्हेन दे लेड अ बैचलर लाइफ फॉर एनी एजुकेशन. Before going to sleep, there's no concept of, I remember, जब हम बचपन में थे तो हमें रात को नहाना रहता था और अच्छा सा नाइट ड्रेस. सो इफ यू आस्क माई सन हु इज कम इन स्टूडियो, ही मस्ट वेयर अ नाइट ड्रेस इन द नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, हैव अ शावर, डू ब्रश, यू कैन हैव प्रेयर्स और वॉट एवर फेथ यू बिलीव इन. ये नहीं है, और ये मैं ट्राई एंड टेस्टेड है बिकॉज माई सन ऑल्सो गोज फॉर अ स्लीप ओवर टू डिफरेंट नेशनलिटीज एंड आई डोंट सी दैट. Wearing a night dress is not a part of the culture to so many of them, you know. They will just wear the dirty clothes or maybe just normal t-shirt and just go to sleep.
2: जो पूरा दिन पहना हुआ है वही पहन के सो गए.
1: हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें रात के टाइम की आप जो प्रिपेरेशन करना है वो बच्चों को करना है. और अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं, एक दिन स्कूल मत भेजो, दो दिन स्कूल भेजो, बच्चे तो हैप्पी है, there would be a time the child would give up. You know, he would throw tantrums. He would say, you're a bad mother. And then there's a new thing they said, you're a monster mother. You know?
2: Yeah.
0: So, देखिए यार, कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे कि आपको जो है अपने बच्चों को किस तरीके से स्कूल वापस जाने के लिए तैयार करना है परिंदा मेहता के साथ. सो सबसे पहली बात जो परिंदा ने बताई कि अपने बच्चों को जो है यू नो इंडिपेंडेंट बनाइए, उनको खुद काम करने दीजिए. एक दिन गलत करेंगे, दो दिन गलत करेंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली सही करेंगे. फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवा के अलखोर।
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 18:13, दैट इज 18:13 एंड जिसका मतलब है 6:13, 6:13।
3: रेडी
4: टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो।
5: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
6: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
7: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
6: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
7: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
6: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
8: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो ओलिव।

0: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: मैंने बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि डार्लिंग्स मूवी में ये गाना भी था। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कसुस एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा के रखा है। अब देखिए यार, हम बात कर रहे थे बैक टू स्कूल की, जहाँ पर बच्चे जो है अब वापस स्कूल जाने के लिए तैयारी जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए, आपने स्टेशनरी उनको दिला दी, आपने उनका हॉलीडे होमवर्क भी करा दिया, सब हो गया है, लेकिन फिर भी आपको जो है कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है बच्चों को जनरली वापस स्कूल भेजते हुए। एंड अगर आप ऐसे पेरेंट हैं जिनके बच्चे जो है पहली बार स्कूल जा रहे हैं, तो ये जो कॉन्वर्जेशन हमने परिंदा मेहता के साथ किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सुनने के लिए। सो परिंदा मेहता प्लैनेट स्क्रिबल की जो बिजनेस डायरेक्टर है, वो इस वक्त हमारे साथ जो है ऑन एयर बातचीत कर रही हैं। एंड हमने इनसे जो है अभी थोड़ी देर पहले ये जानना था कि किस तरीके से आपको ऐसी कुछ मेजर चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपने बच्चों को वापस स्कूल भेज रहे हैं, जहां पर बातों से ये बात निकल के आई कि इंडिपेंडेंट बनाना बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो परिंदा, ये हमने डेली चोर्स की तो बात कर ली, लेकिन अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, सो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड अगर स्टडीज़ की मैं बात करूँ, होमवर्क की बात करूँ, सो उसमें इंडिपेंडेंट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड क्या ट्यूशन क्लासेस को जो है प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कहना है आपका? आपको मतलब ऐसा कुछ क्या आप ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगे यार कि यार देखो ये पेरेंट्स को जो है ध्यान रखना चाहिए बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाते हुए।
1: फ्रॉम सीनियर केजी टू फिफ्थ ग्रेड बच्चे अपने आप होमवर्क करने चाहिए, बच्चे अपने आप पढ़ाई करने चाहिए, एंड नो ट्यूशंस। एंड लाइक अगेन आई एम सेइंग, आई ब्रॉट माय सन एंड प्रॉब्ली इफ यू डू एन इंटरव्यू विद हिम, सो never I have opened his books. I know probably you're sort of, oh, what kind of a mother you are. No, he has to be responsible from grade 1 till grade 5. The only tuitions you need is for the languages like Arabic or English and all, because that is something very difficult for child to learn. But I have seen like, you know, parents, bachche waise bhi parents ke class mein baithte nahi padhai karne ke liye. So that is the reason us stress mein wo log usko tuition bhejte hain. Usse kya hota hai ki aajkal pehle ke zamane mein hum tuition bhejte the, क्योंकि पता है बच्चे बाद में रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। आज के जमाने में दे आर देन बिकम टू मच डिपेंडेंट ऑन अ ट्यूशन टीचर। तो अगर हम बचपन से ही उनको उनको अपना ऐप खोल के अपना होमवर्क देखना है, वो होमवर्क बुक निकालनी है, उनको बुक में होमवर्क खत्म करना है, कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम्स आए तो टीचर है, और आपके क्लासरूम में 15 से 30 बच्चे मैक्स हैज टू बी सेल्फ कम्प्लीटेड, लिमिटेड हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, और इफ आई पर्सनली से नो हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, आस्क योर टीचर्स, फोकस ऑन द क्लास।
0: यस, फोकस ऑन द क्लास। बच्चों को ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने क्लास में ध्यान दे दिया, फिर तो आपको होमवर्क करने में, अपने प्रोजेक्ट्स करने में या अपनी सेल्फ स्टडी करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। सो इसी कूल अपडेट के साथ, इसी कूल एक यू नो फैक्ट के साथ, आपकी एडवाइस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक कूल सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय करते हैं। परिंदा के साथ हमारी बातचीत जो है जारी रहेगी, सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
3: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
5: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग, जबरदस्त इवनिंग मेरे भाई, सिर्फ रेडियो ओलिव पर जबरदस्त इवनिंग, जियो बिंदास,
6: जबरदस्त इवनिंग, जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: मम्मी टिफिन में आज सैंडविच लेके जाएंगे से लेकर दुल्हन हम ले जाएंगे तक टाइम कैसे बदल गया, वक्त कैसे जो है बीत गया चला गया पता ही नहीं चला। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कसुशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लंच में क्या देना है ये हम काफ़ी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड हमें समझ नहीं आता है। एंड सच में एक सबसे एक्साइटिंग चीज़ अगर लंच के बारे में कुछ है तो वो जो है, मतलब स्कूल के बारे में कुछ है तो वो है लंच। सो लंच पर जो है बातचीत हम कर रहे हैं परिंदा मेहता से, जो है प्लैनेट स्क्रिबल की बिजनेस डायरेक्टर, जिससे हम बात कर रहे हैं कि यार क्या कैसे बच्चों को स्कूल बैक टू स्कूल के लिए जो है हमें तैयार करना चाहिए। सो परिंदा, सबसे पहले तो लंच के बारे में बात कर लेते हैं अब कि यार बच्चों का लंच जो है वो किस तरीके से डिज़ाइन हम कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें लंच लेकर भेजना चाहिए।
1: So what happens that for Qatar NRI kids, यहाँ already बच्चे बचपन से ही fun foods जिसको बोलते हैं, okay?
2: Fun foods.
1: So for example, अगर हम उनको रोटी और कुछ देंगे तो 90% वापस आ रहा है। और ये just not a particular nationality like India, it's India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, all kids.
2: Yeah, desis basically.
1: Basically desis.
2: Yes,
1: okay. So मैंने एक बहुत छोटा सा जुगाड़ पेरेंट्स को सजेस्ट किया है। उनको दो लंच होते हैं, ठीक है, एक में जो मम्मी चाहती कि आप खाओ, एक में आपको जो चाहिए वो दो, बिकॉज उनको दो ब्रेक्स मिलते हैं। कट टू नेक्स्ट डे, अगर आपने जो दिया है एज अ मदर उसने खाया नहीं और अपना खुद का खाया है, उसको एक ही लंच मिलेगा जो आप चाहते हो खाने के लिए।
2: ओके
1: ओके,

0: be 1 day, 2 day, 3 day, eventually you'll come around.
1: राइट. और मुझे लगता है कि ये आइडिया सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नहीं, ये हम जैसे बैचलर्स जो कदर में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मील आपकी हेल्दी होनी चाहिए और दूसरी आपको जो खानी है आप वो खाओ. इससे आपकी यू नो बैलेंस डाइट भी मेंटेन रहेगी एंड आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा कि क्या खाएं आज. फिलहाल देखिए आज हम जो है आपको बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग गाने जो है वो सुना रहे हैं. सो ये वाला गाना जो अभी आने वाला है इसको वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास. रात के 2:30 बजे गाने का नाम है और यार वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय करो और कहते रहो जियो.

0: स्कूल्स खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
1: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
0: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
1: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
3: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alcohol.
4: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. Kyunki chal raha hai, zabardast evening. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

गाने का नाम झांझर, और अगर आपको झांझर का मतलब पता है तो वेरी नाइस। बस अच्छी बात है यार, कोई रीजन नहीं बताऊंगी मैं इसके। झांझर यार बहुत सारे अलग अलग चीजों को, जिनमें भी झनन छनन छनन छनन आवाज आती है हमारे यहाँ, तो उसी को झांझर बोलते हैं। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि झांझर जो है वो स्पेशली यू नो पायल को बोला जाता है, एंकलेट को बोला जाता है। तो वेरी नाइस, ये अच्छी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वैसे थोड़ी देर पहले हम जो है परिंदा मेहता से बात कर रहे थे, जो है बिजनेस डायरेक्टर ऑफ प्लैनेट स्क्रबल, जिनसे हमने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन ली जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बैक टू स्कूल वाला वक्त आ चुका है जहाँ बच्चे जो है वो वापस जा रहे हैं। एंड काफी सारे लोगों ने हमें जो है मैसेज भी किया है कि उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये जो हमने बातचीत करी है। सो यार देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं जब भी आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे होते हो स्कूल जाने के लिए, क्योंकि यार देखो उनका ना ग्रोथ वाला टाइम चल रहा है, एंड 2 महीने की वेकेशन भी जो है उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज ला सकती है। वो ज़रूरी नहीं है कि जो वो पहले कर रहे हो वेकेशन पर जाने से पहले वही सेम टू सेम पर्सनैलिटी उनकी वेकेशन खत्म होने के बाद भी रहे। सो बच्चों को जो है बार बार इंडिपेंडेंट बनवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी केयर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक हद तक। सो आज हमने कॉन्वर्जेशन से यही समझा। बाकी अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा है तो पूरा इंटरव्यू आपको YouTube पर मिल जाएगा, जाके रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आप चेक कर सकते हो, एंड यूट्यूब पेज पर भी आप जाके चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं चलती हूँ, एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आपके लिए मैंने यहाँ पे प्लेस करके रखा हुआ है, कॉकटेल 2 से जब तलक गाने का नाम है। सो इसे इन्जॉय करो, एंड उसके बाद जो है आपको सारी अपडेट्स जो है वो थोड़ी सी देर में मिलने वाली हैं ऑलिव अपडेट्स पर। सो वॉल्यूम बढ़ाकर गाना और अपडेट्स दोनों इन्जॉय करो। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए आपकी कशिश के साथ। जियो बिंदास रेडियो।

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 7:08, दैट इज 7:08। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
4: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
5: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: Yes, अगर आप अपने भाई से जो है पेंटिंग कलर्स मांगेंगे तो आप कैसे मांगेंगे? गाना गाते हुए रंग दे मुझे रंग दे। I know, बहुत गंदे जोक मार रही हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ यार, मुझे ना भूख सी लग रही है। मैं क्या करूँ, मुझे भूख में ना कुछ भी समझ नहीं आता है। वेलकम जी, गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑल पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, अमिताभ बच्चन जी जो सदी के महानायक जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पीस ऑफ एडवाइस जो है वो दी है सारे हस्बैंड्स के लिए, सारे लड़कों के लिए। तो जरा अगर आप एक मेल हैं, एक लड़के हैं, या किसी के हस्बैंड हैं, या किसी के हस्बैंड होने वाले हैं, तो जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाइए एंड ये एडवाइस जो है वो सुन लीजिए। सो अमिताभ बच्चन जी का ये कहना है कि देखिए, जिस दिन आपकी शादी होती है उस दिन के बाद से आपको सारी डेट्स जो है वो भूल जानी है, सिर्फ एक डेट याद रखनी है एंड वो है आपकी वेडिंग डेट। क्योंकि कभी भी रैंडम सवाल जो है वो आ सकता है, क्योंकि लड़कियों को बहुत पसंद होता है ये पूछना कि यार आप बताओ, आपको याद है मैं हमारी वेडिंग डेट कब है, आपको याद है कि हम कब मिले थे, आपको याद है कि उस दिन डे कौन सा था, आपको याद है कि जिस दिन आपने मुझे पहली बार देखा था उस दिन मैंने क्या कपड़े पहने थे। ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको हमेशा याद रखनी होती है। भले ही आप अपना नाम भूल जाइए, भले ही आप कुछ भी भूल जाइए, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराना भूल जाना एक बार को, लेकिन ये मत भूलना कि आपकी शादी कब हुई थी। सो अमिताभ बच्चन की तरफ से एक ये बहुत ही अमेजिंग पीस ऑफ एडवाइस जो है वो लड़कों की तरफ फेंकी गई है। आप मुझे बताइए कि आपको आपकी वेडिंग डेट जो है, एनिवर्सरी की डेट जो है वो याद है या नहीं है, या कोई भी एनिवर्सरी, चाहे आप पहले दिन मिले हों, या जब आप पहली डेट पर गए हो, या जिस दिन आपकी बात पक्की हुई हो, इंगेजमेंट हुई हो, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रहती है या नहीं रहती है, या अगर कोई आपका ऐसा किस्सा हुआ है इन डेट्स को लेकर, तो वो आप मुझे बता सकते हैं 3311063। पर फिलहाल जो है एक ज़बरदस्त हिट गाना जो है आला बर्फी, बर्फी मूवी से आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, बहुत ही क्यूट सा गाना है। सो वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय करो एंड उसके बाद आने के बाद कोशिश करेंगे हम कि अब आपको हम कॉन्टेस्ट खिला सकें चुटकी भर सॉन्ग, जहां पर आपको एक चुटकी भर गाना मैं सुनाऊंगी एंड आपको गेस करना होगा कि यार आखिर ये गाना कौन सा है। सो जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाओ, ये गाना इन्जॉय करो, मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदा।

0: देखो यार, इस गाने की जगह
1: बबुआ
0: कोई नहीं ले सकता, इस गाने की जगह कोई भी नहीं ले सकता। बेबी डू डाई डू में जो है इसका रिक्रिएशन हुआ है, लेकिन जो वाइब इस गाने में है वो उसमें कहाँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी जबरदस्त इवनिंग जो है और ज्यादा डबल ट्रिपल जबरदस्त बनाने के लिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ।

यू। एंड आज जो है आपके लिए जो मैं गाना लेकर आई हूँ चुटकी भर सॉन्ग में, वो मेरा बहुत बहुत बहुत दिलो अजीज क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला गाना है। सो बेसिकली आप वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना जो है सुनो, चुटकी भर सॉन्ग है। मतलब थोड़ा सा मैं आपको एक गाने का चंक सुनाने वाली हूँ, आपको बस मुझे बताना है कि ये गाना जो है ये कौन सा है। सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाओ, आपका कान टेस्ट करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाइए और कान लगाकर ध्यान लगाकर ये गाना जो है उसको सुनिए, ठीक है।

स्माइल तो देखो, स्माइल तो देखो चेहरे पर आ गई है कि मुझे तो ये गाना पता है। अब 3311063 पर जल्दी से मूवी का नाम और इस गाने का नाम जो है जल्दी से मुझे बता दो। मैं आपके मैसेज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से जो है मैसेज कर दो। तब तक विशाल उदलानी की आवाज में और आतिफ असलम की आवाज में अल्लाह दुहाई है गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ऑफकोर्स जी, दिल गलती कर बैठा है क्योंकि दिल को ये पता है कि अब जो है शाम हो चुकी है एंड लोग जो है वो अपने घरों में अभी चाय पी रहे होंगे एंड खाना बनाने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है कि आज खाने में क्या बनेगा। ये कितनी बड़ी अपने आप में बात है क्योंकि मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंस हम डिस्कस कर रहे हैं, हम सब कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ पे आके हमेशा हमारी सुई अटक जाती है कि आज खाने में क्या बनेगा। अरे यार कल तो ये बनाया था, अरे पर ये बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट अभी नहीं है, ये बनाने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो हम लोग जो है अडल्टहुड के इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर अभी हमें सरदर्द जो है वो फ्यूचर का नहीं है, हमें सरदर्द इस बात का है कि अभी ये जो दो घंटे बाद या एक घंटे बाद जो खाना खाना है वो क्या खाया जाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को अगर अलग लगता है तो आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल वैसे चुटकी भर सॉन्ग का जो है वक्त हो गया था। मैं हूँ आपकी कशिश, जबरदस्त इवनिंग शो आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं एंड चुटकी भर सॉन्ग में आज मैंने आपको बहुत ही अमेजिंग वाला गाना सुनाया था, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट गाना जो है वो आपने इंजॉय किया था। एक बार और सुना लेती हूँ, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आप भी इसे सुन लो कि ये गाना कौन सा था, मुझे अभी भी बता सकते हो, अभी भी वक्त है आपके पास। सो जरा कान लगाकर और ध्यान लगाकर ये गाना सुनो।

बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी हमें आंसर दे दिया है. एंड देखिए, आपको सुनाई दे रहा होगा शायद कि मेरी मैसेज ट्यून जो है वो बज रही है, यानी बहुत सारे लोग अभी वापस मैसेज कर रहे हैं. 3311063 इज अ नंबर, इस पर अगर आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. आइए सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं किस किस ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. सो सबसे पहले तो भीम जी ने जो है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है. उसके बाद रफीक जी ने बिल्कुल सही ऑडियो नोट में मुझे आंसर दिया है. अस्मा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. मोहम्मद यूसुफ खान जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. मूवी का नाम है दिल से एंड गाने का नाम है छैया छैया, जहां पर शाहरुख खान साहब जो है वो ट्रेन पे डांस कर रहे हैं. एंड इस गाने के बारे में एक फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ कि हार्नेस से पैर को बांधा जाता है जब भी आप ऐसे कोई स्टंट वाला एक्ट कर रहे होते हो, पर शाहरुख खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया था. सो अपने आप में अगर उन्हें बॉलीवुड का किंग कहा जाता है तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है, उन्होंने रिस्क लिए हैं. फिलहाल अभी का एक बहुत ही अच्छा गाना, मैं वापस आऊंगा मूवी से, मस्कारा आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी गोविंदास.

दिलजीत दोसांझ की आवाज में कोका गाना एंजॉय किया आपने 106.3 रेडियो ऑल पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, क्या है ना कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर कुछ है जो बेसिक नेसेसिटीज़ के बाद आता है सो वो है हैप्पीनेस। मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ों में जो है खुशियाँ ढूंढनी होती हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए वो खुशियाँ हम ढूंढ कर लाएँ तो देखो यार उसके लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सो रेडियो ऑलिव की टीम आरजेस जो है वो आ सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपके ऑफिस पे, एंड बहुत सारे फन गेम्स मस्ती मज़ा करने के लिए जो है, एंड आपकी टीम को मस्ती मज़ा कराने के लिए जो है हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सो हमें अपने ऑफिस बिल्कुल आप बुला सकते हैं 3311063 पर। जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, अगर वो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, सो आपके लिए आपकी टीम को मोटिवेट करने का बहुत अच्छा जो है ये एक तरीका हो सकता है। सो 3311063 पर मैसेज कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कि यार कशिश हम इस हैप्पीनेस लाउंज वाली एक्टिविटी में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, बाकी का काम जो है वो हमारी टीम कर लेगी, आपसे कनेक्ट कर लेगी। सो अगर आप चाहते हैं कि रेडियो ऑलिव की पूरी टीम आरजेस के साथ जो है वो आपके ऑफिस में आए, आपकी वर्क प्लेस पे आए, तो बिल्कुल सबसे पहले तुरंत से पहले जो है मुझे मैसेज कर दो 3311063 पर। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, और इस गाने के बाद जेंजी डिकोडेड में आज का जेंजी स्लैंग या जेंजी वर्ड जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास। विशाल मिश्रा की आवाज में ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: trick. Brought to you by Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 8:10. दैट इज 8:10. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: रेडी
3: टू लर्न,
2: टू प्ले,
3: टू
2: ग्रो.
4: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए.

0: एक इन्फ्लुएंसर का ना मैंने इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रही थी कि लड़कों को ना बात करनी नहीं आती. ऑफ कोर्स लड़कों को क्या, लड़कियों को भी बात नहीं करनी आती अगर सामने वाला जो है वो जेंसी स्लैंग्स में बात कर रहा हो. वेलकम जी 106.3 रेडियो एफएम पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा रखी है. अब देखो यार, आज हम एक जिस जेंजी यू नो स्लैंग की बात करने वाले, वर्ड की बात करने वाले, ये बहुत ही क्यूट है एंड यट आपको जो है इससे काफ़ी रिलेटेबल भी फील होगा. हो सकता है कि आपको लगे कि ओ इसको ये कहते हैं. सो अगर आपने सोनू टीटू की स्वीटी मूवी देखी है, सो उसमें किस तरीके से सोनू जो है वो टीटू एंड स्वीटी के रिलेशनशिप को यू नो जज करने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो सही हो या गलत हो वो बात अलग है, लेकिन जज करने की कोशिश कर रहा है. इसको कहते हैं फ्रेंड फ्यू लेंस. यानी जब आपके फ्रेंड का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ये आपको बताने लग जाता है कि क्या आपके लिए सही है, किससे आपको दोस्ती करनी चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए, आपके ऑफिस में कौन आपके लिए सही है गलत है, तो इसे कहते हैं फ्रेंड फ्यू लेंस. जब आपका एक फ्रेंड जो है आपके बाकी रिश्तों में इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट करने लग जाता है, दैट्स फ्रेंड फ्यू लेंस. सो नेक्स्ट टाइम आपका कोई भी दोस्त या आपका कोई भी कलीग जो है वो ज़्यादा यू नो जजी हो रहा हो आपके रिलेशंस को लेकर एंड आपको बोलना हो उनको कुछ, तो आप ये बोल सकते हो यार गाइज मुझे ना ये फ्रेंड फ्यूलेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, या ये जो ABC पर्सन है इसकी लाइफ में वो जो XYZ पर्सन है ये बहुत फ्रेंड फ्यूलेंस जो है वो कर रहा है. सो अगर ऐसे ही वर्ड्स आपको और जानने हैं सो वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी. 3311063 पर मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई और ऐसा वर्ड जो आपको नहीं समझ आ रहा हो या आपके साथ कोई ऐसा इनकाउंटर हो. तो फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द RRF के रेडियो सेट्स पर वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए अफगान जलेबी गाने को. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

यार मैं पता नहीं कितनी बार अपने शो में इस मूवी का यू नो जिक्र कर चुकी हूँ कि सलाम नमस्ते इज अ मूवी जो बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज इसमें ऑब्वियसली प्रीति जिंटा जो है वो एक आरजे बनी है एंड ऑब्वियसली आरजे का कैरेक्टर है, तो फिर मैं मूवी से कैसे रिलेट नहीं करूंगी। एंड हमेशा से ये तो मेरे जो है एक विशलिस्ट में रहा है कि 12:15 बेल्जियन चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो खाने के लिए कोई मेरे को लेके जाए, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो मैंडेट है ना। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। एंड ऐसा नहीं है कि 12:15 मैं कभी आइसक्रीम खाने गई नहीं हूँ, ऑब्वियसली जब समर वेकेशन होती है तो आप अपने कजिन्स के साथ जो है

बहुत ही ज्यादा यू नो हमारा अटेंशन ले, या मतलब बहुत दिमाग ना लगाना पड़े और ज्यादा कमिटेड होके कोई एक सीरीज ना देखनी पड़े. खाना खा रहे हैं अभी थोड़ी देर में सोना ही है तो कुछ लाइट सा देखना है. सो एक्शन रिप्ले एक ऐसी मूवी है जो आप अमेजिंगली देख ही सकते हो. ऐश्वर्या राय है एंड अक्षय कुमार है इस मूवी में एंड आदित्य रॉय कपूर की फर्स्ट मूवी है बॉलीवुड की एंड कितने अच्छे लग रहे हैं सब लोग एंड थोड़ा सा रेट्रो फील है. सो एक बार जाकर एक्शन रिप्ले जरूर से देखना. मैंने अपने दोस्तों को यहाँ पर कतर में दिखाने की कोशिश करी लेकिन शायद उनको पसंद नहीं आई. एक बार आप ट्राई करो, या आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी वो मुझे बताओ. हो सकता है मेरा ही टेस्ट डिफरेंट हो, पता नहीं. 3311063 इज द नंबर. फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग गाना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का पीलू मोहित चौहान की आवाज में आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर. सो ये गाना जो है आप एंजॉय करो एंड पीलू से मुझे याद आया कि जाती हूँ पानी पी के आती हूँ. अभी अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखिए. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
2: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. Kyunki chal raha hai zabardast evening. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: So this was Magic by Diljit Dosanjh. आपने enjoy किया Coke Studio भारत से Magic गाने का नाम है guys. बाकी दिलजीत दोसांझ जी जो मैजिक क्रिएट करते हैं वो तो अलग ही है ना. और मैं भी अगर आप पे थोड़ा सा जादू कर पा रही हूँ, थोड़ी सी ऐसे पिक्सी डस्ट आपके ऊपर फेंक पा रही हूँ, तो बढ़िया बात है. वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश. आप मेरे साथ जबरदस्त इवनिंग इंजॉय कर रहे थे. हाँ जी कर रहे थे, क्योंकि अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है. आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है, क्योंकि यार देखो इस टाइम तक ना मेरी एनर्जी एकदम लो जाती है. मेरे को मुझे बस अब जाना है, मुझे अब सोना है. मेरी बॉडी मुझसे कह रही है कि बहन अब बहुत हो गया, अब लेट जाओ जा कर गई. सो मैं जाती हूँ. एंड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक अपने बच्चों को बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब के लिए जो है रजिस्टर नहीं किया, जहाँ पर हम बहुत सारी फन फॉलिक मस्ती मज़ा करने वाले हैं इस फ्राइडे को, यानी 4th of September को आपके बच्चों के साथ, उन्हें बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट जो है वो देने वाले हैं, उन्हें हाइजीन सुपर हीरो बनाने वाले हैं, उसके लिए अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से जाओ यार हमारे व्हाट्सएप पे 3311063 पर, एंड वहां जाकर OR लिखकर अपने बच्चे का नाम बस आपको मैसेज करना है ना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड हमारे तरफ से आपको कन्फर्मेशन कॉल आ जाएगा. सो जल्दी से जाओ 3311063 पर जाकर मैसेज कर दो एंड अपने बच्चों को रजिस्टर कर दो. बाकी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि अपना ख्याल रखना है, अपने चाहने वालों को ख्याल रखना है, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना है, खाना खाते रहना है, पानी पीते रहना है, क्योंकि हाइड्रेशन का बहुत सारा ध्यान रखना है. और मौसम बदल रहा है तो अपना एक्स्ट्रा केयर जो है वो कीजिए, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना. फिलहाल इंजॉय करो एंड मुझे याद करते रहो. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी अब कल सेम टाइम पर सेम जगह, यानी रेडियो ऑलिव 106.3 पर. एंड बाकी अमेजिंग वाला गाना वेलकम टू द जंगल का टाइटल ट्रैक आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय करो एंड कहते रहो जियो बिंदास टाटा बाय बाय टेक केयर गुड नाइट.
1: Radio Olive Park.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
1: Fresh song of the hour.
2: Ye gana.

0: 106.3 FM, Gio Bindas.
1: ये है मिडनाइट लाउंज।
2: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: टेनमैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Yeah, midnight love. Yeah, midnight love.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लव।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: चांदनी

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।